0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. Milci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने बॉयफ्रेंड को उसके केक में कुत्ते के बिस्किट्स खिलाने का मतलब जस्ट बिकॉज यू आर पिस्ड विद हिम डजंट मीन यू कैन डू सच थिंग्स यार
3: द सीक्रेट बॉक्स
2: बट व्हाटएवर योर कन्फेशन इज फील फ्री टू हिट मी अप एंड टेल मी अबाउट इट बिकॉज मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान और मेरे पास है मेरे मिस्ट्री कॉलर राइट नाउ हेलो मिस्ट्री कॉलर
4: Hi Roshi.
2: How are you, mystery caller?
4: I'm damn good.
2: Ah, you're sounding damn good and very saucy and very hot as well. Is temperature mein legal hai to sound this hot?
4: I swear I was about to say that kyunki main is time cabin mein baitha hu and the room temperature is so well ki mujhe nostalgia ho raha hai jo mere sath hua tha aur main jo aapko batane wala hu.
2: Acha, now this is getting me really excited. Kya hua tha aapke sath jo aap mujhe abhi batane wale ho apne cabin mein baith kar raat ke itne late time par?
4: So basically I went on this date मेरे को एक डेटिंग ऐप बंदी मिली थी तो हम काफी टाइम से बात बात कर रहे थे एंड बीइंग अ गाय मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था आई विल टेल यू ऑनेस्टली बट दैट दिस गर्ल एक्चुअली यू नो वी वाइब्ड सो आई थॉट कि यू आई नॉट आई शुड जस्ट यू नो गो एंड मीट हर इन पर्सन तो मैं उससे मिलने गया हमारी डेट काफी अच्छी गई हम पहले मूवी देखने गए फिर हमने यू नो थोड़ी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव एंड वी बूस्ट फिर अच्छा माहौल वाल बन गया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है अब मैं इसको ड्रॉप करके घर चला जाऊंगा बिकॉज अंदर ही अंदर ख्वाब थे मेरे बट मैं थोड़ा शाय हूँ तो आई थॉट कि ठीक है अनलेस शी सेज मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा बट देन डेस्टिनी हैपेंड एंड शी सेड कि आजा तू ऊपर तक आजा तो हम थोड़ा कुछ खाना वाना खा लेंगे एंड थोड़ा टाइम बैठ के यू कैन जस्ट लीव तो मैंने कहा ठीक है तो हम बैठे अंदर उसके घर पे काफी अच्छा था लाइटिंग काफी प्यारी हो रखी थी ऑलमोस्ट डिम थी तो हम बालकनी में चले गए तो बालकनी में खड़े खड़े पता नहीं फिर हम कब बेड पे लेटने लग गए तो पता नहीं चला पर लेटने तक ठीक था पर सडनली आई रियलाइज कि कुछ हाथ मेरे बंद से रहे हैं बैक ऑफ द बेड कुछ कपड़ा वपड़ा निकाल लिया गया है और वो बेड से मेरे को बांध रही है एंड आई वाज लाइक ठीक है मतलब ठीक लग रहा है मेरे को यहाँ तक
2: राइट
4: थोड़ा वाइल्ड जा रहा है बट इट्स स्टिल फाइन
2: राइट
4: बट सडनली मुझे एक चाबुक की आवाज आई वहां से आई थॉट कि अब मेरे को जाना चाहिए अब मेरे को जेन्युइनली जाना चाहिए
2: वन सेकंड लेट मी रीकैप दिस फॉर यू कि आप डेट पर गए यू गाइस आर गेटिंग कोजी शी टाइज यू अप टू द बेड एंड यू आर लाइक ओके दिस इज ग्रेट मतलब मेरे लिम्स में से दो लिम्स बन रहे हैं आई एम ओके विद दैट एंड देन चाबुक
4: आई एम टेलिंग यू चाबुक और मुझे उसकी आवाज आई है तो मुझे रहा नहीं था वो उसकी आवाज थी उसी से मैं कांप चुका था तो उस मोमेंट आई वाज लाइक कि व्हाट आर यू डूइंग आई नीड टू गो बैक होम एंड वो हंस रही है उसपे
2: ऑब्वियो यार मतलब शी इज इन फुल कंट्रोल ऑफ व्हाट गोज ऑन तू कुछ भी बोल सकता है जब तक तेरे हाथ बंधे हुए टू हर बेड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट
4: मुझे नहीं पता था इतना स्केरी भी हो सकता है तो उसके बाद बस उसके पास सब कंट्रोल था एंड शी डिड व्हाट शी वांटेड टू बट बस एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे मेरे हाथ थोड़े से छूटे एंड आई जस्ट सेड कि बहन आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है आई एम लीविंग गुड बाय
2: योर बहन विद अ व्हिप टर्नड आउट टू बी सच एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस नहीं आज भी आप उसे याद करके आपकी आवाज में ऐसे हो रहा है कि नहीं मैं फिर से नहीं कर सकता ये
4: मैं याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका कल मैसेज आया था
2: I don't want to know more. मेरे पास ऐसे कोई चाबुक वाबुक का कोई आवाज नहीं है I can just plain boring roshify you चलेगा आपके लिए
4: done definitely
0: you've been roshified
2: unfortunately मेरे पास इसके इससे ज्यादा adventurous और naughty आपके लिए कुछ भी नहीं है does that break your heart
4: नहीं नहीं आपकी आवाज काफी नॉटी है वैसे
2: थैंक यू वेरी मच यू जस्ट फॉक्स्ड मी ऑन दैट नोट अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो फाइंड मी ऑन द ग्राम फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कल दोपहर की लंच डेट है मेरी एंड नाउ आई हैव दीज मैसिव डार्क सर्कल्स अंडर माय आईज. अब मैं क्या करूं, आई कांट गो लुकिंग लाइक दिस, मैं वैम्पायर लग रही हूं. हेल्प
1: रोशी के डीएम से.
0: So, Sunidhi sent me this message and I totally get it, Sunidhi, because मेरा डेट का हमेशा nightmare ये होता है कि मैं जा रही हूँ डेट पर, I have like these pigmented marks on my face या dark circles under my eyes या worse, puffy eyes. और इन सब चीजों के लिए, especially eye related matters के लिए, I do a couple of tips and tricks which can totally help you. Number one, अगर आंखों के नीचे puffiness है, dark circles हैं, आप green tea के जो tea bags होते हैं उन्हें हल्का सा पानी में डाल के उसके बाद अपनी आंखों पर लगाइए. दैट्स टोटली गोइंग टू हेल्प यू लाइक टेक केयर ऑफ द पफीनेस. या आप एक और काम कर सकते हो, यू कैन टेक ग्रेटेड क्यूकम्बर या पोटेटोज या फिर उसके स्लाइसेस. नानी हमेशा ऐसे करती है और उसे आंखों पर 10 मिनट के लिए रख दो. डार्क सर्कल्स विजिबली बिकम लाइटर और पफीनेस तो ऑलमोस्ट चली ही जाती है. या फिर यू कैन डू द थर्ड थिंग विच आई ऑलवेज डू, एक कॉटन बॉल लो, उसे ठंडे दूध में डिप कर दो और उसे आई एरिया के आसपास रख दो थोड़ी देर के लिए. That will soothe your skin, make it so soft and supple that आपका मन करेगा पूरे फेस पर लगा दो. And honestly, sometimes I do that. I just wash my face with ठंडा दूध. It really hydrates the skin. आप इस सब को try करके देखो. I know for a fact that you're going to have a terrific date tomorrow for lunch. और आपने lunch में क्या क्या खाया मुझे बताना मत भूलना. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So hit me up, baby. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इस कॉलरबोन का क्या करना है? So imagine there is this room जिसमें मैं और मेरा क्रश, we are together having a conversation. हम दोनों वीडियो गेम्स खेल रहे थे. He invited me over to his place. और बाहर उसके कमरे के उसके लाइक मॉम और बहन वहन सब घूम रहे हैं. एंड ऐसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. वी पॉज द गेम क्योंकि हम चिप्स का ब्रेक ले रहे हैं. और मैंने कुर्ता पहना हुआ था जिसमें मेरी कॉलर बोन दिख रही होगी और वट एवर. एंड ही जस्ट एकदम से स्टॉप टुक है और उसने अपनी फोर फिंगर मेरे कॉलर बोन पर रखी सिर्फ और मुझसे पूछा इस कॉलर बोन का क्या करना है. भाई लाइक इन दैट मोमेंट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. दुनिया के सारे रोमांटिक नॉवल्स फेल हो गए थे. दुनिया की सारी हॉट स्पाइसी मूवीज पीछे रह गई थी. जस्ट द वे ही सेड इट. उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा. आई जस्ट स्माइल्ड एंड हमने चिप्स खाए और वापस वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया. बट यू कैन हियर फ्रॉम माई वॉइस कि मेरी उस दिन भी क्या हालत हुई होगी. अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसी लाइक छोटी सी चीज़ हुई है, ऑलमोस्ट लाइक ना कहने लायक, बट इट मेंट सो मच टू यू, आई वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskrabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: vietva la burga. Milci, burga. Burga. हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी का फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी
2: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
1: लेंस लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब
2: नहीं दीदी,
1: मैं कल का
2: फोटो खींचे। अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटाक।
5: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये मुकम्मल जहान चाहता है तुम्हारे दिल के साथ खेलना, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल सच नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद योर माइंड. आर यू मस्ट हैव गेस्ट की टाइम हो गया है फॉर
0: लव गेम.
2: एंड इफ यू वांट टू प्ले द लव गेम विद मी, सेंड मी योर नंबर ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर जो इंसान है वो जन जन्मांतर से सिंगल है. हेलो, हाय, हाउ आर यू?
3: I'm fine, how are you?
2: I'm very good. आपको पता है कौन बोल रहा है?
3: Yes, Mirchi.
2: Oh my God. How sweet is that? You're like, yes, Mirchi Roshi. एक बात बताओ, आप दुनिया के कौन से कोने से बात कर रहे हो मुझसे?
3: मैं बेंगलुरु.
2: बेंगलुरु में are you single or are you a double roti?
3: Single.
2: तो आप मतलब जन जन्मांतर से ही सिंगल हो या अभी रिसेंटली सिंगल हुए हो?
3: जन जन्मांतर से ही सिंगल है.
2: मेरे साथ आप लव गेम खेल लो. अगर आपके पांचों के पांचों आंसर सही हुए तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी एज अ प्राइज कि इस महीने आप सिंगल से डबल हो जाओ. हाउ डज दैट
3: साउंड?
2: यू वांट एक्सपेरिमेंट? ओके, कूल. आर यू रेडी टू प्ले विद मी द मोस्ट इनक्रेडिबल
0: लव गेम?
3: लव गेम.
2: तैयार हो आप?
3: हाँ हाँ तैयार.
2: I just said त्यार like such a typical पंजाबन. क्या त्यार है तू कि नहीं पुत्र, तू त्यार नहीं है. अच्छा मैं आपसे ये लव गेम पूछूंगी जैसे हमारी लैंड लेडी बात करती है मुझसे और मेरी मम्मी से, ठीक है?
3: Okay.
2: Okay. तो आपको ना बताना है मुझको कि ये सही है या गलत है, ठीक है?
3: Yeah.
2: आपका पहला सवाल है कि पहले जब प्यार में पढ़ते हैं तो क्या प्यार में पढ़ के मेमोरी इम्प्रूव होती है, सही के गलत?
3: सही, बिल्कुल सही, बहुत इम्प्रूव होती है.
2: आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक बार तो ठीक से प्यार किया नहीं है जिंदगी में अभी तक आपने. बोल रहे
3: इम्प्रूव होती है.
2: बट यू आर राइट, इम्प्रूव होती है, ठीक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलिंग इन लव इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, ट्रू या फॉल्स?
3: ट्रू.
2: फॉल्स. साइंस के हिसाब से ये सही नहीं है, डाइजेशन नहीं ठीक होती है प्यार में होने से. ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कियारा और सिड वो शेरशाह के सेट पे मिले थे, सही या गलत?
3: सही.
2: गलत. वो मिले थे ऑन द रैप अप पार्टी ऑफ लस्ट स्टोरी.
3: ओके.
2: बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है आपकी, तभी आप सिंगल हो. आपकी परफॉर्मेंस काफी खराब है. नहीं,
3: ये नॉलेज कौन रखता है?
2: ये नॉलेज कौन नहीं रखता है. अच्छा ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल किस महान इंसान ने बनाया था प्यार में पागल होकर?
3: शाहजहां ने.
2: वेरी गुड. चौथे सवाल का तो आपने सही जवाब दे दिया. आपने आधे का सही जवाब दिया, आधे का सही जवाब नहीं दिया. आपका अगला क्वेश्चन या एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ ट्रिकी. ओके, वुमेन हैव अ हायर चांस of cheating on their partners at the peak of their ovulation. So ovulation hoti hai middle of the period cycle, on the 14th ya 15th day after her period is over.
3: Galat.
2: Are ye bhi isme bhi maar kha gaye. Sahi, because jab ovulation cycle chal raha hota hai, women are actually very passionate and they are extremely desirous and they are also feeling very desirable. So cheating ke chances sabse zyada psychologically physiologically ovulation ke time par hi hote hain. इतना क्यूट है ना ये डायलॉग, ऐसे मैं हार के भी जीत गया. जस्ट बिकॉज यू सेड दैट द वे यू सेड दैट. वैसे तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, इफ यू गेट अनलेस यू गेट ऑल द फाइव क्वेश्चंस राइट, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियली स्लर्पी रोशी किस. ओके, आर यू रेडी फॉर इट?
3: यस.
2: ओके, ह्योर.
3: Received.
2: यार तू बहुत क्यूट बंदा है. I really hope you find someone really as cute as you this month. If you fall in love, find yourself a girlfriend. Promise कर कि तू मेरे को फोन जरूर करेगा.
3: Surely.
2: All the best. I love you.
3: Thanks.
2: Okay, bye.
3: I love you too. Bye.
2: This I love you too was super cute. और अगर ऐसे ही आप मेरे साथ love game खेलना चाहते हो and while you're at it you want to ask for a couple of dating tips, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead, hit me up, do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू।

0: Roshi. Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: मैं एक नूब गार्डनर हूँ, विच बेसिकली मीन्स दैट मैं एक अप एंड कमिंग गार्डनर हूँ और मैंने नए नए प्लांट्स लगाने सीखे हैं इन द लास्ट सिक्स मंथ्स. आई थिंक माई प्लांट्स आर डूइंग प्रीटी ओके, टच वुड. और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जहाँ पर भी मैं अपने सबसे हेल्दी दो प्लांट्स को एक दूसरे के साथ सटका के रख रही हूँ ना, वहाँ वो दोनों प्लांट्स काइंड ऑफ विल्ट करने लग रहे हैं. लेकिन अगर मैं उन दोनों प्लांट्स के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ, दे आर बोथ डूइंग सो सो वेल. एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि रिलेशनशिप्स में भी होता है. अगर एक रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत ही सक्सेसफुल लोग हो एंड यू आर टुगेदर एंड यू आर होपिंग टू मेक अ पार्टनरशिप वर्क, अगर आप एक दूसरे के साथ सारा टाइम चिपके रहोगे ना, तो आप एक दूसरे की स्पेस में इंटरफेयर करने लगोगे. एंड वंस दैट हैपेंस, टू मच ऑफ क्लोजनेस इज नॉट रियली अ गुड थिंग. प्लांट्स की तरह आप भी एक दूसरे की एनर्जी में इतने कन्फ्यूज हो जाओगे दैट आपका जो पोटेंशियल है ऑफ बींग योर इंडिविजुअल सेल्फ, जिस वजह से आप रिलेशनशिप में आए थे, वो कहीं ना कहीं मर्ज करने लगेगा, खोने लगेगा. एंड इफ योर इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट इन अ रिलेशनशिप, देन यू जस्ट बिकम अ शैडो ऑफ योर पार्टनर. और एक शैडो से मोहब्बत नहीं होती है, यू जस्ट फील लाइक हाँ है शैडो, इसके साथ काम चला लेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे प्लांट्स के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना जरूरी है, आई गेस रिलेशनशिप्स में भी, नो मैटर हाउ थिक यू आर, यू हैव टू बी योर ओन इंडिविजुअल एंड असर्ट इट एवरी नाउ एंड देन. और अगर आप भी ऐसे ही झांसी की रानी हो इन योर रिलेशनशिप, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी योर रिलेशनशिप स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मुझे बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो नॉर्मल हो. ये कैसा सेंटेंस है, लेकिन कमिंग फ्रॉम माय बेस्टी, इट्स नॉट वियर्ड एट ऑल. सो उसे एक बंदा मिला है ऑन अ डेटिंग ऐप जो उसके हिसाब से नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मेरी बेस्टी कहती है कि वो इतना एक्स्ट्रा स्वीट है और इतना एक्स्ट्रा नाइस है और इतने प्यार से बातें करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रसगुल्ला हूँ और वो एक चाशनी है. एंड शी इज़ लाइक, यार आई वुड मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, लेकिन अगर ये बंदा ये स्वीटनेस का मास्क उतार देना तो शायद मुझे इसके अंदर एक ऑथेंटिक इंसान दिख जाए जिससे मैं शायद मोहब्बत कर सकूं. क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है दैट यू आर इनटू समबडी, यू रियली वांट टू बी विद देम, बट आपको लगता है कि शायद जो वो दिखा रहे हैं वो हैं, वो सच में नहीं है. आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया मौसी जी, तो सेंड मी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मतबाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने बॉयफ्रेंड को उसके केक में कुत्ते के बिस्किट्स खिलाने का मतलब जस्ट बिकॉज यू आर पिस्ड विद हिम डजंट मीन यू कैन डू सच थिंग्स यार
3: द सीक्रेट बॉक्स
2: बट व्हाटएवर योर कन्फेशन इज फील फ्री टू हिट मी अप एंड टेल मी अबाउट इट बिकॉज मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान और मेरे पास है मेरे मिस्ट्री कॉलर राइट नाउ हेलो मिस्ट्री कॉलर
4: Hi Roshi.
2: How are you, mystery caller?
4: I'm damn good.
2: You're sounding damn good and very saucy and very hot as well. Is temperature mein legal hai to sound this hot?
4: I swear I was about to say that kyunki main is time apne cabin mein baitha hu and the room temperature is so well ki mujhe nostalgia ho raha hai jo mere sath hua tha aur main jo aapko batane wala hu.
2: Acha, now this is getting me really excited. Kya hua tha aapke sath jo aap mujhe abhi batane wale ho apne cabin mein baith kar raat ke itne late time par?
4: So basically I went on this date मेरे को एक डेटिंग ऐप बनने मिली थी तो हम काफी टाइम से बात बात कर रहे थे एंड बीइंग अ गाय मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था आई विल टेल यू ऑनेस्टली बट दैट दिस गर्ल एक्चुअली यू नो वी वाइब्ड सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई शुड जस्ट यू नो गो एंड मीट हर इन पर्सन तो मैं उससे मिलने गया हमारी डेट काफी अच्छी गई हम पहले मूवी देखने गए फिर हमने यू नो थोड़ी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव एंड वी बूस्ट फिर अच्छा माहौल वाहौल बन गया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है अब मैं इसको ड्रॉप करके घर चला जाऊंगा बिकॉज अंदर ही अंदर ख्वाब थे मेरे बट मैं थोड़ा शाय हूँ तो आई थॉट कि ठीक है अनलेस शी सेज मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा But then destiny happened and she said कि आजा तू ऊपर तक आजा तो हम थोड़ा कुछ खाना वाना खा लेंगे and थोड़ा टाइम बैठ के you can just leave तो मैंने कहा ठीक है तो हम बैठे अंदर उसके घर पे काफी अच्छा था लाइटिंग काफी प्यारी हो रखी थी ऑलमोस्ट डिम थी तो हम बालकनी में चले गए तो बालकनी में खड़े खड़े पता नहीं फिर हम कब बेड पे लेटने लग गए तो पता नहीं चला पर लेटने तक ठीक था पर सडनली आई रियलाइज कि कुछ हाथ मेरे बंद से रहे हैं बैक ऑफ द बेड कुछ कपड़ा वपड़ा निकाल लिया गया है और वो बेड से मेरे को बांध रही है एंड आई वाज लाइक ठीक है मतलब ठीक लग रहा है मेरे को यहाँ तक
2: राइट
4: थोड़ा वाइल जा रहा है बट इट्स स्टिल फाइन
2: राइट
4: बट सडनली मुझे एक चाबुक की आवाज आई वहां से आई थॉट कि अब मेरे को जाना चाहिए अब मेरे को जेन्युइनली जाना चाहिए
2: वन सेकंड लेट मी रीकैप दिस फॉर यू कि आप डेट पर गए यू गाइस आर गेटिंग कोजी शी टाइज यू अप टू द बेड एंड यू आर लाइक ओके दिस इज ग्रेट मतलब मेरे लिम्स में से दो लिम्स बन रहे हैं आई एम ओके विद दैट एंड देन चाबुक
4: आई एम टेलिंग यू चाबुक और मुझे उसकी आवाज आई है तो मुझे रहा नहीं था वो उसकी आवाज थी उसी से मैं कांप चुका था उस मोमेंट आई वाज लाइक कि व्हाट आर यू डूइंग आई नीड टू गो बैक होम एंड वो हंस रही है उस पे
2: ऑब्वियो यार मतलब शी इज इन फुल कंट्रोल ऑफ व्हाट गोज ऑन तू कुछ भी बोल सकता है जब तक तेरे हाथ बंधे हुए टू हर बेड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट
4: मुझे नहीं पता था इतना स्केरी भी हो सकता है तो उसके बाद बस उसके पास सब कंट्रोल था एंड शी डिड व्हाट शी वांटेड टू बट बस एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे मेरे हाथ थोड़े से छूटे एंड आई जस्ट सेड कि बहन आज के बाद मुझे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है आई एम लीविंग गुड बाय
2: योर बहन विद अ व्हिप टर्न्ड आउट टू बी सच एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस नहीं आज भी आप उसे याद करके आपकी आवाज में ऐसे हो रहा है कि नहीं मैं फिर से नहीं कर सकता ये
4: मैं याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका कल मैसेज आया था
2: I don't want to know more. मेरे पास ऐसे कोई चाबुक वाबुक का कोई आवाज नहीं है आई कैन जस्ट प्लेन बोरिंग रोशिफाई यू चलेगा आपके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इससे ज्यादा एडवेंचरस और नॉटी आपके लिए कुछ भी नहीं है डज दैट ब्रेक योर हार्ट
4: नहीं नहीं आपकी आवाज काफी नॉटी है वैसे
2: थैंक यू वेरी मच यू जस्ट फॉक्स्ड मी ऑन दैट नोट अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो फाइंड मी ऑन द ग्राम फाइंड मी ऑन इंस्टा एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट जरा

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
2: Only on Radio Mirchi, New York. It's on.

अमृता प्रीतम अपने टाइम की सबसे ज़्यादा पोइनेंट राइटर थी और शायद अपने वक्त से बहुत आगे की राइटर थी, क्योंकि शी वॉज़ वेरी ओपन अबाउट हर रिलेशनशिप्स एंड हर लव. तो उन्हें इमरोज से मोहब्बत हुई एंड इमरोज को उनसे. इमरोज उम्र में उनसे बहुत छोटे थे. सो शी सेज टू इमरोज, जब इमरोज ने ये बात छेड़ी कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए, शायद शादी कर लेनी चाहिए, शी सेड, इमरोज मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए 100% तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम एक बार पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ. अगर तब भी तुम मुझे चुनते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना मंजूर करती हूँ. एंड देन इमरोज ने अमृता प्रीतम को देखा और जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे के चार चक्कर लगा लिए. और उसके बाद अमृता के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठे और कहा, मैंने सारी दुनिया देख ली और मैं तुम्हें चुनता हूँ. एंड दैट्स व्हेन अमृता एंड इमरोज डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर फॉर एवर टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स. एंड आई थिंक कि ये प्यार की इतनी खूबसूरत लव स्टोरी है दैट मैं इसे जितनी बार भी सुनाती हूँ, जितनी बार सुनती हूँ, जितनी बार इसके बारे में पढ़ती हूँ, आई गेट गूज बम्स एंड अ लिटिल टियरी आइड. अगर आपकी भी जिंदगी की लव स्टोरी कुछ इसी तरह है, देन वाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE, एंड आई एम द गर्ल ऑलवेज इन लव विद लव. इसीलिए शायद आई से दिस कि जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Mirchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ.
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा.
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
2: संजना.
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का.
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं.
1: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे.
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: न चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अखियां करे जी हजूर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये गाना अगर किशोर कुमार गाते तो कैसा होता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, मैं आपको कोई AI टूल यूज करके उनकी आवाज में गाना नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं तो ये सोच रही थी यार कि आज तो हम ये सब कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा सैयारा का टाइटल ट्रैक इंटरनेट पे किशोर कुमार साहब की आवाज में भी अवेलेबल है, एंड इट इज साउंडिंग सो ब्यूटिफुल। तो आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पहले के टाइम की खूबसूरती शायद यही थी कि इतने रिसोर्सेज या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत सारा कुछ बस ख्यालों में, इमेजिनेशन में, इनमें होता था और हमारे बस के बाहर होता था, वही उसकी खूबसूरती थी। अब जरा आप इमेजिन कीजिए, बस उसको कुछ करना नहीं है, बस इमेजिन कीजिए कि आने वाला गाना जो किशोर कुमार साहब की आवाज में है, वो अगर मुकेश जी गाते तो कैसा होता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी
4: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
3: लेंस लगाया नहीं
4: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब
4: नहीं। मैं कल को
3: फोटो खींचे,
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
3: अरे
4: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
3: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी, दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: आशा पारेख जी अपने ग्रोइंग अप इयर्स में एकदम टॉम बॉय थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने शेयर किया था।
1: दरअसल ये हुआ है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लड़के ही थे और मैं एक लड़की, तो जो लड़के खेलते थे वही मैं खेलती थी। जैसे वो एक पत्थर मारने की गेम थी, पत्थर मारने वाली गेम सीख ली, काइट्स फ्लाई करने की टंगे भी उड़ाई है, फिर मार्बल से भी खेली हुई हूँ मैं। इस तरह से वो सब जो हरकतें थी वो लड़कों जैसे हो गई।
0: इसीलिए उनके उछल कूद वाले जो रोल होते थे वो काफी मजेदार होते थे, ज्यादा नेचुरली आते होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 1971 में एक मूवी आई थी बुड्ढा मिल गया, याद है ना आपको? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिड 80s में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में ना एक ए रेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था मुझे बुड्ढा मिल गया। अभी बहुत सारे NRIs जब तब के वीडियो स्टोर्स में जाके वीडियो कैसेट लेकर आते थे तो वो 1971 वाली बुड्ढा मिल गया समझ के ले आते थे, और जब वो VCR में उसको चलाते थे तो उनको पता चलता था कि ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर।
1: और फिर वो वीडियो स्टोर वाले के पास ऐसे दंदनाते हुए गुस्से में जाते थे कि भाई ये क्या दे दिया तुमने।
0: कुछ लोग नहीं भी जाते थे, वो खुश हो जाते थे कि बेटर कॉन्टेंट देखने को मिल गया है।
1: Anyway, हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं।
0: 1971 वाली बुड्ढा मिल गया, इसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं राइट हियर पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

आपको पता है लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब क्या मास्टर आदमी थे। फिरजी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब वो गाने लिखते थे ना तो अक्सर गानों में 3-4 अंतरों की जरूरत होती थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये इतने टैलेंटेड थे कि 20-40 अंतरे भी लिख देते थे कि भाई खुली वैरायटी है, तुमको जो उठाना है उठा लो। ऐसा ये गाना था जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर 1 पर था। कंपोज्ड बाय रविंद्र जैन, सैंग बाय लता मंगेशकर। ये अपने टाइम का सुपरहिट गाना सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुली रिटन बाय हसरत जयपुरी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

छोटे होते ना मुझे फिल्मों में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, अमर अकबर एंथनी, ये मल्टी स्टारर फिल्म्स जो होती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब कभी मुझे लगता था नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ उछल कूद कर रही है, गाना गा रही है वो एक में और एक तू, फिर वो तारिक शाह क्या था वो हीरो का नाम भूल गई मैं, उनके साथ वो गाना गा रही है लिख कर हम दीवाना दिल। फिर उसी फिल्म में जीनत अमान विजय अरोड़ा के साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो वाले गाने में परफॉर्म कर रही हैं। फिर हम किसी से कम नहीं का जो कवाली वाला टाइटल ट्रैक था उसमें वो ऋषि कपूर के साथ है, तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात बताऊं, छोटे होते वाली ये जो टेंशन जो कंफ्यूजन होती थी ना ये अच्छी होती थी, कितनी प्यारी इनोसेंट हार्मलेस सी होती थी। बड़े क्या हो गए, दिक्कतें ही बदल गई भाई, हमें नहीं खेलना ये बड़े होना बड़े होना, हमको वापस छोटा कर दो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virpa la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है,
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Pirani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: क्या कहना माधुरी दीक्षित का और क्या कहना उनके डांसर्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारु आपके साथ। और क्या कहना था माधुरी दीक्षित का उनके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में। एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या कहा था।
1: 1 2 3 ऑफकोर्स मेरा सबसे फेवरेट गाना रहेगा हमेशा, क्योंकि इस गाने ने मेरी एक पहचान बनाई। तब तक मैं सरोजी के साथ काम कर चुकी थी पहले, उत्तर दक्षिण में उन्होंने गाने किए थे मेरे, लेकिन क्लासिकल फॉर्म में ज़्यादा किए थे। तो पहली बार ऐसे कुछ वेस्टर्न इंडियन बॉलीवुड ऐसा मिक्स था, तो सरोजी ने कहा कि आपको इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो रिहर्सल की हमने, गाना शूट हुआ, जब आया तो लोगों ने इतना पसंद किया।
0: तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट सुन लेते हैं ये ढेंटड़ैन गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार, और जिसे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कादर खान साहब एक अलग ही विरली वखरी असीम शख्सियत थे भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने अपने ओरिजिन के बारे में क्या शेयर किया था, कहाँ से वो और उनकी फैमिली बिलोंग करते थे।
1: प्रीन की मेरी वालदा थी क्वेटा बलोचिस्तान की, और मेरे वालिद जो थे वो कंधार के थे, और ये लोग जाके सेटल हो गए थे काबुल में। वहाँ जो है मुझसे पहले तीन मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और मर जाया करते थे सर। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है, यहाँ मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगी। गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे गरीब घर में अफगानिस्तान काबुल से कहाँ जाएंगे वो, बहरहाल चल पड़े लोग। होते हुआते धक्के खाते ये कुदरत जो है मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिख रही थी, और मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरे खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर।
0: क्या बोलता था ये बंदा भाई, और आप कभी इनके इंटरव्यूज आराम से सुने ना तो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है इनकी। इसी बात पे एक इंस्पायरिंग गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

1974 की रोटी कपड़ा और मकान वीरू देवगन साहब की एज स्टंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वीरू देवगन साहब द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जो अजय देवगन जी के फादर भी थे। बहुत सी फिल्मों में इससे पहले ये एज स्टंट मैन काम कर चुके थे। और आपको पता है ये जब 13 साल के थे, लेट 40s की बात है, तब ये पंजाब से भागकर बॉम्बे आ गए थे। फिर उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए और ये सब करते करते वो ना जो मोहल्ले के लड़कों की गैंग वॉर टाइप होती है ना, उसमें शामिल हो गए। वहां लड़ाई झगड़े करते थे। तब आप सोचिए उस टाइम के स्टंट डायरेक्टर स्टंट कोऑर्डिनेटर रवि खन्ना साहब थे, उन्होंने इनको एक स्ट्रीट फाइट में नोटिस किया और इनको उठा के ले आए कि भाई अपनी लड़ाई करने वाली तुम्हारी जो कला है उसको यहाँ इस्तेमाल करो। कई बार लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है अनएक्सपेक्टेडली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: थी।
1: ऋषि दा की फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले ना मैंने ऋषिकेश मुखर्जी की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म जो थी 1957 की मुसाफिर वो देखी और अच्छी लगी मुझे फिल्म। और आप तभी देखें अगर आपको सर्टेन सैड टोन्स इन द फिल्म ओके हैं, मतलब थोड़ी बीच बीच में वो सैड भी हो जाती है। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें तीन कहानियां हैं। तो पहली स्टोरी का एंड अच्छा है, दूसरी स्टोरी का एंड अच्छा है, तीसरी स्टोरी का एंड सैड है। हालांकि वो जो थर्ड स्टोरी है ना वो बहुत ही पॉपुलर एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। तो किसी दिन आपका हैप्पी प्लस सैड मूवी ऐसा देखने का सीन हो तो आप देख सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, स्लो है, सैड टोन वाली पिक्चर है थोड़ी सी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और अभी हम यहाँ पे हैप्पी रोमांटिक टाइप का गाना सुन लेते हैं मिर्ची पर।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga. Mirchi.
1: It's Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उन लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे।
1: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
0: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। पुरानी चीज विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

लोग 3-4 मिनट के गाने नहीं सुन पाते हैं, 12 मिनट की कव्वाली कौन सुनेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कहा गया था यस्टरडेज़ के प्रोमिनेंट म्यूजिक कंपोजर रोशन नागरथ जी को, जो ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर भी थे और जिन्होंने कंपोज की थी 1960 की फिल्म बरसात की रात की आइकॉनिक कव्वाली। ऐसा सुनने में आता है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 24 से 27 घंटे लग गए थे और 72 से 75 रीटेक्स। अब उस टाइम पे तो लाइव होता था ना सब, किसी एक से गलती हुई तो पूरा गाना वापस से रिकॉर्ड। और किन किन दिग्गजों ने ये गाना गाया भाई, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, SD बातिश और पता नहीं कितने कोरस सिंगर्स और कितने म्यूजिशियंस। इसमें कुछ पोर्शंस में ना जहाँ पे सिंगर्स ने आलाप लिया है, वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, ये लिरिक्स रेवोल्यूशनरी हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा गाना ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तो भी कुछ लाइंस बहुत पसंद है, जैसे खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इम्तिहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क, ये है इश्क इश्क जी। इसी कव्वाली का दूसरा पार्ट, पहले हमने 5 मिनट सुने थे, अभी बचे हुए 7 मिनट्स राइट है पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मोड़े घूंघट पटकी। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

वाह साहब, जगजीत सिंह साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनकी आवाज में, उनकी कंपोज की हुई, साथ में चित्रा सिंह जी ने भी कंपोज की है ये गजल, और इसे लिखा है सईद राही साहब ने। और दोस्ती के बारे में कुछ एक दो शेर अर्ज किए हैं। बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बशीर बद्र साहब ने ही लिखा है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। अच्छा, इधर राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ली जाए, म्यूजिकल ब्रेक, जहाँ हम दोस्ती वाले एकदम फिल्मी गाने सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ब्लू टर्कवाइज कलर की साड़ी में उछलती कूदती लहराती बलखाती हंसती गाती वहीदा रहमान जी याद आ जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। कैसे उन्होंने इस गाने को ना पूरी तरह से ऐसे ओन कर लिया, छा गई, मतलब देवानंद तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। और कितना ब्यूटीफुल गाना है जो एक तरह की फ्रीडम को डिस्क्राइब करता है। चलिए अगले गाने पे आते हैं अब, जिसके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि इस गाने में जब जूही चावला ऐसे अंगड़ाई ले रही थी और उनका वो ऐसे गोल गोल घूमने वाला शॉट लिया जा रहा था, तो वो जो शॉट ले रहा था ना कैमरामैन ट्रॉली पे, वो जूही चावला को देखते देखते ऐसे फिसल गया, गिर गया। कयामत से कयामत तक का ये गाना सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: क्या सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम। ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
2: अच्छा,
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ¡Ay! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Hit Gunny!
1: Radio Merchy, New York. It's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vidba la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
1: आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

से ना हो पाएगा। कौन बोला, कौन बोला?

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट रेडियो मिर्ची
1: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम
0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट

0: समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

हो पाएगा। कौन बोला, कौन बोला अपना

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने किसी न किसी चीज के एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं? आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एडिक्शन में एक ऐसी बात करते हैं जो ज्यादातर जिसके बारे में बात होती नहीं है। टेक्नोलॉजी के एडिक्शन के बारे में बहुत बातचीत होती है, रिहैब सेंटर्स भी खुल गए हैं, फूड के क्रेविंग को लेके या एडिक्शन को लेके भी बात होती है एक्सेट्रा। बहुत अलग अलग तरीके के एडिक्शन होते हैं। किसी को हम थोड़ी देर बाद वर्कोहॉलिक पे भी या शॉपोहॉलिक पे भी बात करेंगे, वो भी एक अलग तरह का एडिक्शन है। लेकिन जिस बारे में शायद कम बात होती है, होती नहीं है, शायद टबू है हमारे सोसाइटी में, वो है लेट्स से पॉर्न एडिक्शन। बहुत लोगों का इसका एडिक्शन है, शायद इसके आसपास इतना स्टिग्मा भी है कि यार तुम बड़े गंदे तरह के इंसान हो। तो ऐसा जब एडिक्शन होता है, मैं देखता हूँ ज़्यादातर इसको एड्रेस नहीं किया जाता हमारे सोसाइटी में, ना फैमिलीज में एड्रेस होते हैं, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एड्रेस होते हैं। तो अगर कोई इससे गुजर रहा हो, पहली बात तो ये पता करना ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल एक स्पेस में आप कर रहे होते। लेकिन ज़्यादातर अगर पता चलता भी है तो द रिएक्शन इज वेरी कि तुम कितने गंदे इंसान हो, हमारे घर में ऐसी औलाद पैदा हुई, हम तो सोच भी नहीं सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो ये रिएक्शन है, और दूसरा है कि अनप्रिपेयर्ड हैं एज अ पेरेंट या एज अ सिबलिंग या एज अ सपोर्ट सिस्टम। तो इस केस में क्या करें? क्या इस पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए? और अगर ऐसा है अपने घर में तो क्या करना चाहिए?
4: See, I feel any addiction जो है वो एक lack of will power है, और चाहे वो porn का addiction है, चाहे वो किसी अल्कोहल का एडिक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, वो आपको जैसे हमने कहा प्लेजर दे रहा है। ऐसे पॉर्न का एडिक्शन भी इट्स नॉट वेरी इजी टू गिव अप, क्योंकि वो आपको कुछ एक्सटैटिक फील कराता है, जिसको हम इंद्रियों का सुख कहते हैं। कुछ नहीं मिलेगा तो उस चीज़ का एडिक्शन क्यों होगा? लेकिन विद एनी एडिक्शन उसकी डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। कोई भी एडिक्शन माना, आज जितनी चीज़ आपको आज खुशी दे रही है, आप किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, एक सिगरेट जो आपके लिए आज करेगी वो कल नहीं करेगी,
3: तो दो से तीन
4: डब्बा धीरे धीरे धीरे धीरे, तो उस चीज की आपको डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर पॉर्न, आपको उसका आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। यू वुड बी वॉचिंग इट मोर, यू वुड बी वॉचिंग इट सीक्रेटली, बिकॉज इट्स गिविंग यू दैट एक्सटैटिक फीलिंग, उसके बिना आपको वो फीलिंग नहीं आती। अब यू आर नॉट मोर अडिक्टेड टू एल्कोहल और टू पॉर्न और एनीथिंग, यू आर अडिक्टेड टू दैट फीलिंग
3: जो वो आपको दे रहा है।
4: हाँ, हर इंसान को खुशी चाहिए, हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को अच्छा फील करना चाहिए, उसको वो चाहिए कि आई शुड फील गुड। वो कहीं से भी मिले, उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, उसमें हर एक के सोर्स अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहीं से लेता है, कोई कहीं से लेता है, बिकॉज हम एक्चुअली उसका सोर्स स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं। अगर हीरे मिलने शुरू हो जाएंगे ना तो पत्थर सारे अपने आप छूट जाएंगे।
3: वाह, क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने हमारी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स को कितना प्रभावित किया है, आइए इस बात को समझे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: आज बहुत बड़ी समस्या है, मैं खुद फेस करता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी खुद की बेटी 6 घंटे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, और मैं जब उससे पूछता हूँ तो वो अपने रूम में बैठी रहती है। जब मैं उसको बोलता हूँ चलो आओ कुछ गेम खेलते हैं, कभी कभी आती कभी नहीं आती, तो मुझे कभी कभी लगता है एम आई फेलिंग एज अ पेरेंट, क्योंकि क्या मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो मुझसे दूर होती जा रही है। तो मैं बैठ के इस बारे में बात भी कर चुका हूँ, एंड प्रोबेबली मेरा कारण सोशल मीडिया से हटने का यही था कि अगर मैं करूँगा तो शायद मुझे देख के, बिकॉज कभी कभी होता ना आप कर रहे हो मैं क्यों नहीं करूँ। तो ऐसे केसेस में जब सामने वाला उसको एक ढाल बना चुका है, इट रियली हर्ट्स यू ऑन अ पर्सनल लेवल। हाउ डू यू ब्रिंग द पर्सन आउट, बिकॉज़ वो एडल्ट है। आज मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, उसका फोन तो नहीं ले सकता मैं।
5: यू विल हैव टू मेक दैट एफर्ट, क्योंकि एज अ पेरेंट एक अच्छी पालना देने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई अंडरस्टैंड कि जब बच्चे ग्रो हो जाते हैं तो उनको फोर्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक वो अडल्ट नहीं होते दे डोंट नो वॉट इज गुड फॉर देम। हमारे कल्चर में थोड़ा ज्यादा ये चीज हो गई है कि फ्रीडम वो चूज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। 10-year-old और 12-year-old को क्या पता उसके लिए क्या अच्छा है।
4: I have a 19-year-old also, तो 19 साल वाली को मैं फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ।
5: ऑब्वियसली वो अडल्ट है, फिर वो अपने डिसीजंस, वो पहले 19 साल बहुत जरूरी होते हैं पेरेंटिंग के, क्योंकि एक आपके समय पर भी आपने देखा होगा इतनी चॉइसेस नहीं होती थी। पेरेंट कहते थे ये करना है ये नहीं करना।
4: बिल्कुल,
5: वो कोई कोई चीजें नहीं अच्छी लगती थी, बच्चा रोता था थोड़े समय के बाद चुप हो जाता था, पर वो लाइफ में नहीं रोता था।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि उसको ना सुनने की आदत थी, सब कुछ उसके अनुसार होता ही नहीं था।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो लोग एडिक्शन से जूझ रहे हैं, उन्हें उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब ऐसी बात करते हैं जो ज्यादातर जिसके बारे में बात होती नहीं है। अगर कोई एडिक्शन से गुजर रहा हो, इस केस में क्या करें? क्या इस पे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए? और अगर ऐसा है अपने घर में तो क्या करना चाहिए?
4: पत्थर से खेलने में भी बहुत मजा आता है, और पत्थर को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है जब तक हीरे ना मिले। लेकिन जब हीरे मिलते हैं तो पत्थर छूट जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता है। मेजोरिटी लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, वो आपको कहेंगे हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ
3: छूट गया।
4: चाहे बड़े बड़े सेंट भी हैं, बुद्धा है, कोई भी, वो कोई भी नहीं कहेगा हमने छोड़ा। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की जर्नी क्या होती है, वो ऐसा नहीं होता कि ये छोड़ो और फिर आप करो। इट्स लाइक बाल्टी में गंदा पानी है, आपको उसको साफ पानी से भरना है। एक ऑप्शन है कि आप सारा गंदा निकालो फिर साफ भरो, पर स्पिरिचुअल जर्नी वो नहीं होती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, वो नहीं होता।
3: साफ पानी डालते रहो,
4: आप साफ पानी डालते रहो, गंदा निकल जाता है।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया।
4: फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो रिट्रीट सेंटर्स पे कई बार 2-3-4 दिन की कॉन्फ्रेंसेस होती है। अब उस सेंटर के अंदर कोई भी प्रकार का अल्कोहल, सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, कैंपस के अंदर अलाउड नहीं है। तो हम उनको पहले से डेलीगेट्स को कहते हैं 3 दिन आप ये नहीं कर सकते। तो कहते नहीं, फिर तो हमें जाना ही नहीं है, हम तो 1 दिन भी इसके बिना नहीं रह सकते। 3-4 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो आदत है, मैं दिन में 10 बार स्मोक करता हूँ, और आप कहते 3 दिन नहीं करना, नॉट पॉसिबल। फिर हम उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, आप चलो, अगर बहुत ज्यादा आपको हो तो आप कैंपस के बाहर जाके कर लेना। यू नॉट अलाउड इन द कैंपस, आप कैंपस के बाहर जाकर कर लेना।
3: बट ज्यादातर आप देखते हैं कि 3 दिन तक उनको जरूरत ही महसूस,
4: उनको जरूरत ही नहीं महसूस होती। लेकिन क्यों? क्योंकि 3 दिन उनको एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिला, 3 दिन वो बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुन रहे थे, अन्न जो बन रहा था, जो वो खाना खा रहे थे, वो बहुत प्योरिटी में, भगवान की याद में बनाया जा रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स शिफ्ट हो जाते हैं जब आप कैंपस में आ जाते हैं ना, जो स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए जाते हैं। उनको एनवायरमेंट मिलता है, कंपनी मिलती है, प्योर इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्योर फूड मिलता है, दे लॉट ऑफ थिंग्स दैट चेंज 3-4 दिन के लिए। सो दे स्टार्ट फीलिंग, उनको कुछ मिलने लग जाता है, दे स्लीप वेल, और उनको 3-4 दिन उस चीज की खींच नहीं होती। एंड दे आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि मैं जो 1 दिन नहीं रह सकता, वो 4 दिन कैसे रह लिया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आखिर लोग एडिक्शन का शिकार क्यों होते हैं, इसके पीछे की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वजह क्या है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: रोजमर्रा की जिंदगी में लेट से आपके घर पे है या आपका कोई बहन या भाई है जो हॉस्टल में रहता है, अलग शहर में रहता है, और वो गुजर रहा है इसके थ्रू, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, पॉन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, उसको इस तरफ ले जाने के लिए एज अ सपोर्ट सिस्टम आप फैमिली हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, क्या कर सकते हैं?
4: इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि वो भी डिनायल में होता है, क्योंकि जो भी इन चीजों का एडिक्शन लेता है वो कमजोर होता है। कोई भी एक पावरफुल सोल एडिक्शन का सहारा नहीं लेती। इवन फॉर दैट पॉन जो आप कह रहे हैं, आप कभी भी जब एडिक्शंस का सहारा लेंगे ना, लेटर आपको डिप्लीटेड ही फील होगा।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: उस मोमेंट में आपको एक्सटैटिक फील होगा, लेकिन आपके फिजिकल पावर ड्रेन हो जाएंगे। जो किसी भी चीज से एडिक्टेड होता है उसका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। इवन पीपल हु आर एडिक्टेड टू पॉन, उनके मन में वही चीज चलती रहती है, चलती रहती है, क्रेविंग होती है, बार बार उसके दिल होती है, उनके परफॉर्मेंस लेवल बहुत कम होने लग जाता है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल, क्योंकि एडिक्शन खींचता है ना अपनी तरफ
3: कि और समय दो मुझे, और समय दो।
4: वो चाहिए आपको, हिट चाहिए, किक चाहिए, हाय चाहिए, वो वहां से मिलना है। तो डोजेस बढ़ानी है। पहले आपको एक बारी में हो जाता था, फिर आप क्या करेंगे, एक घंटा काम करने के बाद भी आप बाहर जाकर के थोड़ा सा एक सिगरेट लेकर आएंगे, थोड़ा सा देख कर आएंगे। सो जस्ट इमेजिन आप कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, यू आर लूजिंग पावर ऑन योर ओन सेल्फ।
3: तो जब ये जो इंसान है जो इससे पीड़ित है वो दूर है और आपको उसको मदद करनी है,
4: कई चीजें आप कर सकते हैं अगर वो दूर है। पहली चीज ये है, साइलेंस बहुत इसमें हेल्प करता है। जिस समय देखो, कोई व्यक्ति जब कमजोर होता है ना, कई बार उसके अंदर बहुत ताकत नहीं होती, पर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे मॉर्निंग आवर्स में फॉर एग्जांपल 4 o'clock का टाइम बहुत पावरफुल होता है। आप करके देखो, आप उठो उस समय, आप उसको भी इमर्ज करो, और आप अंदर में सोचो ये बहुत पावरफुल सोल है, ये बहुत एलिवेटेड सोल है, ये भगवान का बच्चा है, ये इन चीजों को करेंगा ही नहीं, ये छोड़ देगा। It is a lie, but all manifestations begin with a lie.
3: So, आप अपनी positive vibrations उसकी तरफ भेजें।
4: आप देखें, जब हम वो maths आदि में theorem आदि करते थे, they would always begin with if.
3: हाँ, if अगर ऐसा हो तो, हाँ, बिल्कुल।
4: Then it would come to therefore.
3: Right.
4: है ना, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आप पहले अज्यूम करते हैं। यहाँ पर जब हम वो चीज कहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो झूठ है। ये झूठ नहीं है,
3: नहीं है। आप
4: ये विधि है सिद्धि की।
3: बिल्कुल, बहुत सही बात कही। थ्योरम में हम इफ बोलते थे तब ठीक था, यहाँ हम झूठ क्यों मानते हैं उसको।
4: अगर आपको किसी को कैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में वैसा सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका थॉट प्रोसेस उन तक जाएगा। खास अगर पेरेंट चाइल्ड है, वो वैसा सोचना शुरू कर देंगे।
3: वाह, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Energy. It's hot. मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है या कभी कभी साइलेंस ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है? आइए साइलेंस की पावर को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो इस स्थिति में एक्चुअली फेक इट टिल यू मेक इट सही है,
4: इट इज द ट्रूथ, क्योंकि कई चीजें बोल करके नहीं होंगे। साइलेंस इज गोल्डन क्यों कहते हैं? साइलेंस में इतनी पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि साइलेंस में पावर है। जो चीज आप अगर किसी को बोल करके नहीं कर पा रहे, आप किसी को समझा के आप कहते थक गए, इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? उनके पास पावर नहीं है।
3: वो आप वाइब्रेशन से भेज सकते हैं,
4: आप उनको पावर दो, आप दे सकते हैं। आप पावर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अगर मेरे पास वो पावर है। पर अगेन मोस्ट केसेस में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। क्या होगा इसका लाइफ में, क्या होगा, मिराकुलस
3: हीलिंग नहीं होती है।
4: नहीं, हमने अपने स्पिरिचुअलिटी में और सेंटर्स पर लोगों को इसके रिजल्ट देखे हैं करते हुए, कि उनका कोई भाई है, कोई है, एडिक्शन है, बोल बोल करके थक गया, अभी नहीं हो रहा। वो लोग मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, उनको इमर्ज करते हैं, वो एनर्जी उनको सेंड करते हैं, थोड़े समय के अंदर उनको उनके अंदर चेंज देखना शुरू कर देते हैं।
3: बिल्कुल।
4: और उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास ये पावर कहाँ से आई। मदर अपने बच्चे को बहुत पावर दे सकती है, क्यों? आप कनेक्टेड होते हैं ऑल द टाइम।
3: बिल्कुल।
4: मदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप तो ऐसा होता है, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं।
3: बिल्कुल।
4: कि इधर से वो सोचते हैं उसको उधर पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर चाइल्ड इज अब्रॉड, यू आर हियर एंड दे आर नॉट वेल,
3: आपको पता चल जाता है।
4: आपको पता चल जाता है।
3: बिल्कुल।
4: कैसे पता चलता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। वो वहां सोचता है मम्मी होती तो गर्म पानी देती, ये करती, ये बना देती, ये सूप देती। आप कनेक्टेड है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, पर वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होकर के आता है, बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट यू।
3: बिल्कुल।
4: एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड, सो यू आर एबल टू पिक अप। आप क्या पिक अप करते हैं? मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है।
3: कुछ ठीक नहीं।
4: फिर आप कॉल करके कहते कुछ ठीक नहीं, तो कहते आपको कैसे पता चला?
3: बिल्कुल।
4: और ये हम सब जगह देखते हैं। मैंने इट इज अ वेरी कॉमन होता पेरेंट चाइल्ड में ज्यादा है, क्योंकि बोथ पीपल हैव टू थिंक अबाउट ईच अदर। क्लोज रिलेशनशिप में होता है, यू कनेक्टेड, आप रोज बात कर रहे होते हैं, रोज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो सोचने से पहले वो वाइब्रेशन आप पिकअप कर लेते हैं। जब आप ये पिकअप कर सकते हैं कि वो बीमार है, मैंने आप थॉट ही तो पिकअप कर रहे हैं ना, तो अगर आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे
3: तो वो भी उन तक पहुंचेगा।
4: वो भी उन तक पहुंचेगा।
3: तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंस में उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स भेजिए।
4: अच्छा सोचे, आप ये सोचे उन्होंने छोड़ दिया,
3: बस, और वो छूट जाएगा धीरे धीरे।
4: होगा, होना ही है, होना ही है, लेकिन इस पर फेथ रखकर उन्होंने छोड़ दिया, वो बहुत अच्छी आत्मा है, करेंगी ऐसी। सो यू थिंक राइट अबाउट देम, राइट 10 सेंटेंसेस, पावरफुल सोल है, मुझे उसके ऊपर पूरा फेथ है, वो इस चीज से मुक्त हो चुकी है, वो बिल्कुल क्लीन है, वो बहुत फोकस्ड है, वो बहुत, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, परमात्मा की एनर्जी चारों ओर उसके तरफ है, प्रोटेक्शन की लेयर है, कोई गलत चीज उसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती। सोचते हम कभी ऐसा नहीं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: क्या हर सिचुएशन को फोर्स करने से वो और उलट जाती है? आइए जाने पेशेंस और एक्सेप्टेंस का महत्व।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: पहले लोग कहते थे कि रात को हो सके तो किताब लेके बैठो और अच्छी चीजें पढ़ो,
5: अच्छी चीजें पढ़ो,
4: ताकि जब आप सोए तो आपका माइंड अच्छी चीजें ही डाइजेस्ट कर रहा है।
5: जो हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट 15 मिनट्स होता है, जो हमारा रात का 15 मिनट्स होता है, उस समय पर जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है।
4: बिल्कुल।
5: इसलिए जो आप कह रहे हैं पहले के समय पर, तो देखो दिन कैसे अंत होता था, वी वर थैंकिंग गॉड। दिन कैसे शुरू होता था, वी वर प्रेइंग टू गॉड। वो हमारा तरीका था कि ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में बनी रहे, हम उसको इन्वोक करके कोई भी चीज शुरू करें, और दिन के अंत में चाहे सफलता है असफलता है उसको सब कुछ सरेंडर करके ग्रेटिट्यूड के साथ हम सोए। देखो लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, धीरे धीरे धीरे धीरे वो जाती जा रही है, चाहे वो यूथ हैं बड़े हैं, न्यूज के साथ हम सो रहे हैं या किसी भी चीज के साथ। ये हमें देखना है, आप एक हफ्ता ऐसा करके देखो, फिर एक हफ्ता दूसरा करके देखो, इम्पैक्ट देखो दोनों का क्या होता है। जैसे कई बार कोई कहता है नहीं मैं तो इस खाने के बिना रह ही नहीं सकता, फिर हम उसको कहते हैं आप हेल्दी डाइट एक हफ्ता करके देखो, एक महीने के लिए आप हेल्दी डाइट पर जाकर देखो। एंड देन पीपल से मुझे शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा, बट देन आई फेल्ट सो लाइट, आई फेल्ट सो हेल्दी, आई फेल्ट सो गुड अबाउट माई सेल्फ। सो यू स्टार्ट फीलिंग, क्योंकि आपने वो शुरू किया, वो लाइफस्टाइल को अपनाया। ऐसे इस कंटेंट के साथ हम सो जाते हैं या उठते हैं वो भी ठीक है, चेंज करके देखें,
4: एक ट्राई तो करके देखिए कि क्या
5: उठते होता। ही हम कुछ अच्छा सुनते हैं और सोने से पहले हम 15 मिनट कुछ अच्छा सुनते हैं, तीन पॉइंट्स ग्रेटिट्यूड के लिखते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दीज थ्री थिंग्स। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स सेंडिंग आउट बहुत हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में। आप देखेंगे जो लोग बहुत धन्यवाद होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत अच्छा अच्छा होता जाता है, उनको पता नहीं चलता है क्यों। और वो फिर पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ना पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा है।
4: बिल्कुल,
5: हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। एक्चुअली वो अच्छा सोचते हैं इसलिए अच्छा होता है। उन्होंने ये हैबिट इंकल्केट की हुई है, कई लोगों ने ये हैबिट है, वो सोने से पहले तीन बार तीन चीजें लिखेंगे कि आज दिन में अच्छा क्या हुआ है। वो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में रेडिएट कर रहे हैं, जो भेजेंगे वही तो लौट करके आएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रीचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रीचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी के हर चैलेंज में गिव अप करने के बजाय अपना नजरिया बदलकर उसे कैसे जीता जा सकता है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और मुझे याद है एक समय तक मैं भी कर रहा था, फिर भी आदत छूट गई। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी हो, छोटा सा एक टेम्पररी स्टेप है कि भाई रोज रात को बैठ के तीन अच्छी चीजें तो आज हुई वो लिखो तो सही।
4: लिखो ही, और नहीं भी मिले तो मेक एन एफर्ट। सी इवन दिस बॉडी, आज इस बॉडी ने आपको साथ दिया और आप आज कुछ कर पाए। डू वी एवर एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू आवर बॉडी? बीमार होता है तो हम कितना कहते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, हम काम पर वापस जा पाएंगे, मेरा कितना लॉस हो जाएगा, कितना बॉडी के बारे में सोचते हैं। पर क्या इस बॉडी को हम थैंक भी करते हैं कभी?
3: तो आप कह रहे हैं जब आप तीन चीजें रात को बैठ के लिख रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। इट कुड बी सिंपल कि भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं देख पा रहा हूँ।
4: हाँ?
3: मैं बहुत शुक्रगुजार, मैं चल पा रहा हूँ।
4: yes?
3: तो छोटी छोटी चीजें अगर कुछ नहीं हो रही है तो ये भी लिखो, बहुत जरूरी है।
4: और जब आप ये लिखना शुरू करते हैं तो सडनली वो लिस्ट बहुत बड़ी होने लग जाती है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: और कॉन्शियसनेस जब शुक्रिया की होंगी ना, तो आपके जीवन में बरकत होने लगेंगे, माना भरपूरता, गुड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। कईयों की लाइफ कंप्लेन की होती है, माना 90 चीजें अच्छी होंगी, 10% कुछ ऊपर नीचे होगा, पर कॉन्शियसनेस उस पर अटक जाती है, एनर्जी वहां जाता है, अटेंशन वहां जाता है, वो ग्रो हो जाता है।
3: ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो और बढ़ जाता है,
4: वो बढ़ जाता है,
3: इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मुश्किल हालातों में अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखें? आइए इसके बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बहुत बार कभी क्या होता है कि सामने वाले को झकझोर नहीं सकते आप, और वो शायद सही भी नहीं है। अपनी साइलेंस में बैठ के एनर्जी भेजो, फिर 7-8-10 दिन बाद उनसे बात करो। आप मैनिफेस्ट करके लिखिए आप जो आपने कहा।
4: आप बोल नहीं सकते तो आप लिखें, या जब आपको चिंता होती है आप लिखना शुरू करते हैं।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं वो बहुत ज्ञान नहीं सुन पाते, हमारे सेंटर्स पर कहीं आते हैं, आप सोचे आप उनको बहुत सुनाएंगे, वो नहीं सुन पाते हैं। तो हम उनको छोटा सा एक प्रैक्टिस देते हैं कि आप सिर्फ ये लिखना शुरू करो पेपर पर, आई एम अ पावरफुल सोल।
3: अरे वाह, क्या
4: कुछ भी नहीं, आप ये लिखना शुरू करो, 100 बार लिखो, 200 बार लिखो। नाउ ऐसे लिखने से वो पावरफुल नहीं एकदम बन नहीं जाएंगे, पर उनका नेगेटिव कट हो जाता है।
3: और प्लस वो आप जब आप लिखते हैं तो आप वो पढ़ते हैं और आपके जहन में वो बैठता रहता है। तो आप सही कह रहे हैं, और आप शायद धीरे धीरे वो बिलीव भी करने लगते हैं।
4: आप बिलीव करने लगेंगे, आप वो बन जाएंगे। आप जो सोचेंगे आप वो बन जाएंगे।
3: क्या बात?
4: अगर आप कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये कहाँ से लाइनें आई, आई कैन डू इट। बट यू हैव टू जस्ट कीप, यू नो, इवन इफ इट्स अ लाई, जस्ट कीप रिपीटिंग इट एंड इट विल हैपन। बिकॉज आपके मन को, ब्रेन को, बॉडी को, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस।
3: क्या बात है। मैं अपने बच्चों को कई बार अक्सर कहता हूँ, वो मुझे कहता है पापा क्या हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं उनको कहता हूँ मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि भगवान को ना शब्द नहीं सुनाई देता है। तो जब आप बोलते हो ना कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो नहीं सुनता नहीं है उसको, उनको लगता है कि आपको ये चाहिए, तो भर भर के आपको देता है। तो पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो, शायद आपकी ज़िंदगी में उससे कमाल नज़र आएगा। और जो आपने कहा साइलेंस में बैठ के एनर्जी भेजो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप्स। जो
4: जब चिंता हो लिखो, परमात्मा कहता है चिंता नहीं करो, शुभ चिंतन करो।
3: अरे वाह, क्या बात है, चिंता मत करो, शुभ चिंतन करो।
4: आपकी चिंता उनको, चिंता कहते चिता के बराबर है, क्या है चिंता और चिता में एक डॉट का ही तो फर्क है।
3: तो जो बोओगे वो पाओगे।
4: हाँ,
3: तो फसल जो है वो ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगा।
4: आपकी चिंता आपके बच्चे को कमजोर करेगी,
3: और आपके शुभ चिंतन आपके बच्चे को
4: एम्पावर करेगा।
3: बहुत बढ़िया।
4: तो चिंता नहीं करो, करो जब कुछ कर नहीं सकते, आप कहते ना मैं क्या करूँ, उसको करना है, तो चिंता भी नहीं करो,
3: मत करो। सही बात।
4: चिंता नहीं करो, शुभ चिंतन करो, टेंशन नहीं करो, अटेंशन दो। टेंशन नहीं करो, अटेंशन दो। थिंक राइट ना, थिंक राइट नो मैटर वॉट, फील ग्रेट नो मैटर वॉट।
3: बहुत बढ़िया, व्हाट अ लवली थॉट, व्हाट अ लवली थॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there. Good morning, my coffee drinkers. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मिर्ची मॉर्निंग्स हैज ऑफिशियली जस्ट बिगन. अगर तुम अभी फिलहाल ट्रैफिक में अटके हुए हो या फिर ट्रेन का वेट कर रहे हो या फिर कहीं सबवे में अपना सैंडविच और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेकर खड़े हो या फिर घर से वर्क करते हुए कैमरा ऑफ करके जी रहे हो, वेलकम. यू आर अमंग योर पीपल. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग दैट मैटर्स, जैसे कि बॉलीवुड, घर का नॉस्टैल्जिया, रैंडम लाइफ थॉट्स एंड वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स. एंड साथ साथ में वो एक सवाल कि चाय 50% ज्यादा अच्छी क्यों लगती है जब कोई और बनाता है. टेल तुम्हारे पास इसका जवाब है या नहीं है? अगर है तो मुझे भी बताओ. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Yambala. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बता दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी
3: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैंने हूँ listening to Mirchi Mornings. अब सुबह सुबह का मूड थोड़ा सा और बॉलीवुड बनाते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लो. For all the hopeless romantics, the playlist repeat offenders, और वो जो विशाल मिश्रा का गाना सुनकर विंडो के बाहर सिनेमैटिक स्टेयर मारते हैं, उन सब के लिए एक खुशखबरी है मेरे पास. IUSA Inc. presents विशाल मिश्रा live in New Jersey. The Pagalpan Tour 2026 is happening on this Friday, 26th of June at Hard Rock Live at Etis Arena, Atlantic City, New Jersey, जिसके दरवाजे खुल जाएंगे 7 बजे से. और अगर उसके टिकट्स जीतने का एक मौका तुम ढूंढ रहे थे तो वो मौका आ चुका है. बड़ा ही इजी बीजी क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ तुमसे, जिसका मिर्चीदार जवाब देकर तुम ये टिकट्स जीत सकते हो. विशाल मिश्रा किस सिटी में परफॉर्म करने आ रहे हैं? तुम्हारे ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक सिटी, ऑप्शन बी अलास्का सिटी एंड ऑप्शन सी अंधेरी वेस्ट. फटाफट से अपने सही जवाब भेजो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर 9033647244. विशाल मिश्रा लिखना है, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है और ऑप्शन ए बी या सी जो भी तुम्हें सही लगता है उसे भेज दो फटाफट से अभी इस नंबर पर. या फिर और जल्दी अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट टिकट्स जीतने हैं तो मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और अपने सही जवाब तुम यहाँ पर भी भेज सकते हो. डेफिनेटली फॉलो मी देयर. एंड अभी फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स सुनते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज है 19th of June और आज का दिन हिस्ट्री बुक्स में ओवर अचीवर निकला था, क्यों? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले चलते हैं 1865 में। आज के दिन अमेरिका में जूनटीन्थ मार्क किया जाता है। ये वो दिन है जब एनस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स इन टेक्सास वर ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड दैट दे वर फ्री। फिर आते हैं 1944 पे, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर बैटल ऑफ द फिलिपीन सी शुरू हुआ था। 1953 में न्यूयॉर्क में जूलियस और एथल रोजनबर्ग का एस्पियोनाज केस में एग्जीक्यूशन हुआ था। और इंडिया में 1966 में मुंबई में शिवसेना एस्टैब्लिश हुई थी। 1981 में इंडिया लॉन्च एप्पल, नॉट आईफोन वाला एप्पल, इट्स अरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और अब जल्दी से तुम्हें याद दिलाती हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला। विशाल मिश्रा का पागलपन टूर होने वाला है थैंक्स टू साई यूएसए इंक ऑन नेक्स्ट फ्राइडे 26th of June 7 PM ऑनवर्ड्स एट हार्ड रॉक लाइव एट एटीज अरेना अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी। और अगर इसके टिकट जीतना चाहते हो अभी के अभी यहाँ पर, तो फटाफट से मेरे एक सिंपल से सवाल का मिर्चीदार जवाब दो। विशाल का कॉन्सर्ट किस सिटी में हो रहा है? ऑप्शन ए अटलांटिक सिटी, ऑप्शन बी अलास्का सिटी एंड ऑप्शन सी अंधेरी वेस्ट। फटाफट से व्हाट्सएप भेजो मुझे 9033 मिर्ची पर 9033647244, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर। फॉर्मेट होगा विशाल मिश्रा, अपना पूरा नाम और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी लिखकर मुझे भेजना है, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और साथ में अपने ईमेल आईडीज भी भेजना। और अभी फिलहाल लगाती हूँ कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज योर वेदर डिपार्टमेंट का रिमाइंडर कि आज मौसम कैसा होने वाला है। राइट नाउ इट्स अराउंड 75 डिग्रीज एंड इट्स पार्टली क्लाउडी, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। हवा थोड़ी सी फिल्मी चल रही है एंड इट्स मेकिंग इट फील अ लिटिल बिट कोल्डर, 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स की तरह बरसात नहीं होने वाली अगले 24 आवर्स में। वी सॉ सम रेन्स यस्टरडे, लेकिन आज 0 मिलीमीटर्स की बरसात है। टेम्परेचर का आज का रेंज है 67 से 82 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होने वाला है 64 से लेकर 80 डिग्रीज फारेनहाइट तक। इंटरेस्टिंगली आज कल से थोड़ा सा ज्यादा कूल है। यस्टरडे वी टच्ड 89 डिग्रीज फारेनहाइट, आज सिर्फ 82 मैक्सिमम होने वाला है टेम्परेचर। और जाते जाते बाहर अपना सन प्रोटेक्शन SPF 50 लगाना बिल्कुल मत भूलना, एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, लेयर के प्लेयर बनो और चिपके रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मिर्चीदार गाने आने वाले हैं अभी, राइट हियर राइट नाउ। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बारी है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने की। सबसे पहले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने स्विट्जरलैंड जाकर प्लान सीज फायर टॉक्स कंटिन्यू करने का प्लान होल्ड पर रखा है आफ्टर रीजनल टेंशन हैव इंक्रीज्ड। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि यूएस वीपी जेडी वैन स्विट्जरलैंड ट्रिप पोस्टपोन कर रहे हैं फॉर नाउ। नंबर टू पर इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मीडिया चैटर को थोड़ा सा ह्यूमर के साथ रिप्लाई किया है आफ्टर अ फोटो फ्रॉम द G7 गॉट अटेंशन। उनका वाइब बेसिकली था, गाइस कभी कभी फोटो बस फोटो होती है, उस पर न्यूज नहीं बननी चाहिए। एंड लास्टली दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड किया है जिसके अकॉर्डिंग टेलीग्राम इंडिया में नीट यूजी 2026 री एग्जाम पीरियड के दौरान टिल जून 22nd अनअवेलेबल रहने वाला है। कोर्ट ने कहा है मेजर्स को लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट माना गया है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjetvala burga. Mirci, burga.
2: Mirci.
3: Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
2: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. I hope Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. And Sara Ali Khan just teamed up with Henry Cavill for a brand campaign. And social media collectively dropped everything and said, excuse me? The pictures are out and Sara captioned it a royal affair. And internet ne turant declare kar diya, unexpected collab unlocked. Honestly, desi audience ka reaction was very simple. Ek side par, oh my god, what a pair. And doosri side par, kya kisi ne ye Sara ke family WhatsApp group par bheja hai abhi tak? And can we appreciate the confidence Bollywood glam meets global star power? Or internet ki favorite hobby continues to zoom in, overanalyze and create rumors where there are none. Aur ab Bollywood ke rumors से चलते हैं हम रियल लाइफ के स्टार पावर की तरफ, यानी कि तनिष्क जो लेकर आ रहे हैं फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज करो वहां पर जाकर ओल्ड गोल्ड एंड यू कैन गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस. यानी कि अगर डायमंड खरीदोगे पुराना गोल्ड देकर तो तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है. और साथ साथ में अगर तुम्हारा पुराना गोल्ड जो है वो 9 कैरेट से अबव है या 9 कैरेट है तो उस पर 0% डिडक्शन भी मिलने वाला है तुमको एक्सचेंज कराते वक्त, विच इज pretty sweet deal, I must say. Terms and conditions applied hai and of course ab bari aa chuki hai Mirchi Dar bangers chalane ki only on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla, mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Namaste and good morning. This is Mirchi Mornings और अभी मेरा promotion हो चुका है. मैं आज से योगा गुरु बन चुकी हूँ. मेरा नाम है प्रिसानंदा जी महाराज. International Yoga Day is on this Sunday. इसीलिए तुम्हें मिर्ची पर absolutely free of cost yoga classes मिल रही है, जिसको तुमने मांगा नहीं, लेकिन हम फिर भी तुमको देने वाले हैं. और आज के दिन मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ क्या. Presenting the Yes Boss Asana. सबसे पहले stand tall. Step 2 is your boss says something completely incorrect in front of 12 people. Step 3, you slowly nod with a tiny smile. And step 4, अपने सर को ऊपर उठाओ. Step 5, अपने सर को नीचे लेकर आओ. And then repeat. Step 6, अपने सर को ऊपर उठाओ. Step 7, अपने सर को नीचे लेकर आओ. And step 8, कहो that's actually a great point, boss. Step 9, hold that position until your boss is impressed. Breathe in and breathe out. और ऐसे करते करते तुम अपने फिटनेस गोल्स पर पहुंचो या ना पहुंचो, अपने प्रमोशन गोल पर शायद पहुंच सकते हो, बट एट व्हाट कॉस्ट.

0: अच्छा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो ऊपर नीचे। वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करूं।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: कैन यू फील द टेंशन लीविंग योर शोल्डर्स राइट नाउ एंड एंटरिंग योर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू? And that, my friends, is the most practiced yoga pose in corporate America. Tumhare yoga guru ka kehna hai, repeat after me. I am calm, I am composed. And of course, I'll keep listening to Mirchi Mornings par Priscilla. Prisananda ji Maharaj ko. But jokes apart, yoga actually started as a practice of balance, breath and awareness. And honestly, jo yoga karte hain, unko pata hoga how important it is for your physical and mental health. And on that note, fatafat se mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Filhal, stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Gold lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. 4,150 ke saath, aaj gold ki price kal se about $100 cheaper trade kar rahe hain. Raj Jewels ke saath, is Father's Day ki celebration ke liye gold mein invest karein. वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ, फादर्स डे की सिलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के, आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें. आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो ड्रीम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स पर, वो टाइम जहाँ पर हम पता करते हैं टॉप न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले, अ न्यू रिपोर्ट सेज गोल्ड प्राइसेस कुड क्लाइम सिग्निफिकेंटली ओवर द कमिंग मंथ्स इफ प्रोजेक्शंस प्ले आउट। द पीपल हु बॉट ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए आर सडनली फीलिंग वेरी विजनरी। नंबर टू पर, इंडिया टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा हैज रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज टू रिव्यू हर एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026 स्क्वाड, सेइंग द डिसीजन फेल्ट डिसअपॉइंटिंग एंड दैट नो स्पेसिफिक रीजन वॉज कम्युनिकेटेड। एंड फाइनली, मेक्सिको बिकम्स द फर्स्ट टीम टू रीच द नॉक stage of FIFA World Cup 2026 after a 1-0 win over South Korea. Midfielder Luis Romo scored the winner, and honestly, imagine scoring your first World Cup goal and casually sending your team through. That's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisilla tumhare saath mein. Connect with me Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: बहुत अच्छा है, क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बता दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं,
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसको चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए राशियों का हाल चाल. ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: इट इज यानी मेष राशि. आज हीरो मोड ऑन कर लो. अपॉर्चुनिटीज वेट नहीं करेंगी. तुम भी वेट मत करो. बस एक्साइटमेंट में अमेजोन कार्ड पूरा भर के शॉप मत कर लेना. लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. बिग कॉन्फिडेंस एनर्जी आज तुम्हारी लाइफ में है. एम थोड़ा सा आउटरेजियस रखो बिकॉज यूनिवर्स आज तुम्हें सब कुछ दे रहा है. लकी कलर इज ब्लू. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि. पास्ट फ्यू वीक्स का हार्ड वर्क फाइनली विजिबल हो रहा है. बस खुद को सेल्फ सैबोटाज करने की जो आदत है उसे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा. लकी कलर इज आइस मिंट. लकी नंबर इज 8. कैंसर यानी कर्क राशि. यू सर्वाइव्ड अ लॉट रिसेंटली एंड टुडे गिव्स मेन कैरेक्टर ग्रोथ. इमोशनल मसल्स भी मसल्स ही होते हैं. लकी कलर इज कोरल. लकी नंबर इज 26. लियो यानी कि सिंह राशि. यू हेल्प समवन एंड यूनिवर्स नोटिस्ड. रिवॉर्ड पेंडिंग है, तब तक के लिए ट्रीट योरसेल्फ मे बी विद सम कॉफी एंड यम्मीलिशियस केक. लकी color is mango color. Lucky number is 5. And last but not the least, Virgo yani kanya rashi. Quiet day, don't trust it. Something behind the scene is moving. Stay alert but not detective in office party wala mode. Lucky color for you is gray color. Lucky number is 31. And that's it for your mirchi rashi zone part 1. Part 2 yani ki bachi hui 6 rashiyon ko lekar aaungi main thodi si der mein. Tab tak tum suno mirchi dar bangers. Main hu Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse insta aur x par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तुम राशि जोन only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi राशि जोन.
1: लिब्रा यानी तुला राशि. करियर एनर्जी राइजिंग. एम्बिशन काफी अच्छा है, बस प्लान बना लो तो और भी अच्छा हो जाएगा. गूगल कैलेंडर पर मैनिफेस्टेशन का टूल होना चाहिए. लकी कलर इज रूबी. लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. लुक्स लाइक यू विल नीड टू स्पीक अप टुडे. पोलाइट रहो लेकिन क्लियर रहो. डिप्लोमेसी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिर्ची. लकी कलर इज मिडनाइट प्लम. लकी नंबर इज 23. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. मनी मूड को चेक कर लो. इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग देख लो. अपना फायदा होना चाहिए, नुकसान ही इतना स्पेंड करना. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 11. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. अ डील में लुक टू गुड फॉर यू, लेकिन थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस कर लो. रीड द टाइनी टेक्स्ट कर लो. अच्छे से सोच समझ कर इन्वेस्ट करना. लकी कलर इज स्टील ब्लू. लकी नंबर इज 37. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि. आज तुम्हारी क्रिएटिव स्ट्रीक स्ट्रांग है, लेकिन नेक्स्ट लेवल टीम वर्क में है. अकेले सारी चीजें नहीं हो सकती है. बी केयर. लकी कलर इज मिंट एंड लकी नंबर इज 2. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी मीन राशि. Stop waiting to be noticed. अपने लिए खुद आवाज उठाओ. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पिच योर आइडियाज एंड आज थोड़ा सा बोल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ दुनिया को देखना चाहिए. लकी कलर फॉर यू इज पर्ल एंड लकी नंबर इज 19. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, fresh maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: और बस ऐसे ही हम आ गए हैं शो के एंड तक। मैं हूँ प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी फिलहाल तुम ऑफिस पहुंच गए हो, स्कूल ड्रॉप हो गया है, चाय रीफिल हो गई है, या फिर होपफुली तुम्हारा मूड थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। बिफोर आई लीव यू, एक लास्ट पीस ऑफ एंटरटेनमेंट की गॉसिप फॉर योर डे। अपेरेंटली जेसन मोमोआ हमारे कार्ल रोगो, He had some seriously nice things to say about Vidyut Jamwal, हमारे इंडिया के अपने ओन जैकी चैन। While talking about working together in Street Fighter, Momoa said Vidyut is one of the most beautiful looking men he's ever seen. He also called him unbelievably talented and even joked that Vidyut should help him get a job in Bollywood and that they should do something together. Honestly, I absolutely support this energy. We want Jason Momoa in Bollywood and मैं चाहती हूँ कि अगले 5 सालों तक सिर्फ उनको लेकर movies बनती रहे। Because imagine one side action hero की entry होगी, दूसरी side Bollywood का slow motion walk होगा, तीसरी side पर SRK होंगे और चौथी side पर Jason Momoa background में कहीं ना कहीं से निकल कर आ रहे होंगे, maybe villain बनके या फिर hero बनकर। And can we also appreciate men supporting men? Healthy compliments, we need more of that, please. And somewhere in India now, parents will start asking their kids to go to the gym and build like Jason Momoa. Anyway, on that note, I want to thank you for spending your mornings with me. आज weekend शुरू हो चुका है, तो have a great one. मैं जाती हूँ तुम्हें कुछ मिर्चीदार bangers के साथ छोड़कर। खाओ पियो, ऐश करो, और मुझे अगर miss करोगे तो मुझसे बातें कर लो। Insta और X पर मेरा handle name है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: हिंदी फिल्मों की प्रेम कहानियों का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हंसते गाते खेलते बच्चों ने प्यार किया है, उनके पिताओं ने उसका विरोध किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पता नहीं ये पिताजी लोग ठंड क्यों नहीं रखते थे, why won't they just chill? अभी मैंने प्यार किया फिल्म की बात करें, है लड़की के पापा तो ओके थे, लेकिन लड़के के पापा जो अमीर थे उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज उनकी क्लास ऊंची थी, उनके पास ज्यादा पैसा था। गरीब घर की लड़की, हमको नाइट चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट मूवी का सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं, कयामत से कयामत तक, इसमें तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या थी, खानदानी दुश्मनी, लेकिन नतीजा क्या निकला, दोनों बच्चों की मौत और पछतावा। तो काहे को प्यार का विरोध करना। वैसे इस मूवी ने, इसके गाने ने बाप बेटे के रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम हमको दे दिया था, तो सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ क्या है
4: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने?
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम क्या है?
4: चंद्र फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार,
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये।
3: अरे आपने लिया कहाँ से था?
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: हमने थोड़ी ना मैन्युफैक्चर
4: किया, मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए,
4: यहाँ फोन मत करिए यार।
5: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर काम का टाइम है,
5: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू को।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: प्यार मोहब्बत में जिए मरे जा रहे हैं, बाप की मौत के बदले का क्या? कब लेगा रे तू अपने बाप का बदला?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: भाई हिंदी फिल्मों में बाप की मौत के बदले वाली थीम तो पिछले जन्म से चले आ रही है।
1: हर डेकेड में पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें
0: बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ या उन्हें मार दिया गया और फिर फिल्म के हीरो ने वो होते हुए देखा और फिर बड़ा होके उसने उसका बदला लिया। लेकिन 80s तक आते आते ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें ये हुआ कि जो माँ थी उसने अपने बच्चों को सारी मुश्किलें फेस करते हुए पाल पोस के सिर्फ इसीलिए बड़ा किया ताकि वो बड़े होकर अपनी बाप की मौत का बदला ले सकें। रिवेंजफुल माँ जिसके बच्चे उसका हथियार, पिक्चर ब्लॉकबस्टर है यार।
1: ऐसी एक फिल्म राम लखन हा? पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu।
1: सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

दयावान फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म की स्टोरी क्या है, एक बच्चा अपने बाप को पुलिस के हाथों अनलॉफुली मरते हुए देखता है, पुलिस से नफरत करता है, बड़ा होके गैंगस्टर बन जाता है। पर हिंदी फिल्मों में पिताओं ने बहुत अलग अलग चीजें दी है बच्चों को, पैसा, प्यार, परवरिश, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, ट्रॉमा भी दिया है, लाइफ में लेसन्स, लाइफ में मोटिव भी दिए हैं, सबसे बड़ा मोटिव बदला। अच्छा, एक फिल्म थी जिसमें बाप अपने बेटे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छोड़ के गया था, एक गैजेट जिसको हाथ पे पहन लो तो इंसान गायब हो जाए, दिखाई न दे, मिस्टर इंडिया। वैसे इस फिल्म में अनिल कपूर का जो किरदार था अरुण भैया, वो जिस तरह से कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में रखते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो एक फादरली लव की अलग ही डेफिनेशन है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

डॉन और डॉन का हम शक्ल विजय। हाई मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ 15-20 फिल्मों में डबल रोल तो किया होगा, जिसमें काफी फिल्मों में बाप बेटे का किरदार भी उन्होंने निभाया। एक तो अपनी टेलीविजन की जो राष्ट्रीय फिल्म है उसमें वो बाप बेटे बने हैं सूर्यवंशम मूवी में, फिर एक लाल बादशाह। और पुरानी फिल्मों की बात करें तो आखिरी रास्ता, देश प्रेमी, अदालत, इन सारी फिल्मों में बाप भी अमिताभ बच्चन, बेटे भी अमिताभ बच्चन। और एक फिल्म में तो इन्होंने अति कर दी थी, बाप का रोल भी अमिताभ बच्चन और दो जुड़वा बेटों का रोल भी दोनों अमिताभ बच्चन। ट्रिपल रोल इन महान, महान ही है ये बंदा। वैसे अमिताभ बच्चन के उनकी काफी फिल्मों में उनके फादर से काफी ऐसे डिफिकल्ट से रिलेशनशिप रहे हैं, या फादर के किरदार की वजह से उनको काफी कुछ सहना करना पड़ा। उस बारे में भी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

शराबी फिल्म का गाना, वही फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार विकी की जिंदगी के तंबू तीन बंबुओं पे खड़े होते हैं। शायरी, शराब और आप, ये आप इसमें है मुंशी फूलचंद, जो ओम प्रकाश जी प्ले करते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार फादर फिगर मानता है। वो इसीलिए बिकॉज उनके जो फादर है इन द फिल्म, जो प्राण साहब प्ले करते हैं, वो बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। उनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए, तो बच्चा इग्नोर होके शराब पीना शुरू कर देता है। अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके जो फादर के साथ रिलेशनशिप रहे हैं इन द फिल्म, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, लेकिन बच्चन साहब ने वो रोल क्या एफर्टलेसली प्ले किए हैं। जैसे त्रिशूल मूवी भी, जहाँ पे वो बाप का बदला नहीं माँ का बदला लेते हैं बाप से, संजीव कुमार प्लेड हिज फादर ना। दीवार फिल्म में भी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद हिज फादर, व्हाट ही थॉट अबाउट हिज फादर, यू नो, सत्यन कपूर जी उनका फादर प्ले करते हैं और उनके साथ जो भी होता है फिल्म में, अपनी फैमिली को वो अबैंडन करके चले जाते हैं। वो जो अबैंडन ह्यूमिलिएटेड बेटे विजय का रोल अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया है ना भाई, हैट्स ऑफ। देन आई थिंक एक और फिल्म जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फादर सन का दिखाया गया है, वो है शक्ति फिल्म, जिसमें फादर प्ले करते हैं दिलीप कुमार साहब और बेटे अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत सही है। चलिए इसी फिल्म का ये सही सा गाना भी सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na fiind vala burga. Milci, burga.
2: Milci.
3: Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गाना, सुपर्ब फैमिली ड्रामा जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। और अक्सर इस फिल्म में ना ये जो बच्चे खोने वाला दोष है, ये माँ पे निरूपा रॉय जी पे मर दिया जाता है कि हर फिल्म में बच्चे खो देती थी। हेलो, बाप के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? जो बाप का रोल प्ले करते हैं प्राण साहब इन द मूवी, वो बच्चों को पार्क में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। चलो सिचुएशन ऐसी होती है, गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं, बट बच्चों को पार्क में अकेला कौन छोड़ के जाता है? इसीलिए तो इधर उधर हो जाते हैं तीनों बच्चे, सब बिछड़ जाते हैं। अच्छा, एक और मूवी थी 1965 की, वक्त, जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। Well, that happens because of earthquake, लेकिन उसमें भी जो फादर का रोल बलराज सानी प्ले करते हैं, उनको ऐसा दिखाया जाता है कि उनको खुद पे ऐसे बहुत विश्वास होता है, वो डेस्टिनी में, टाइम में, किस्मत में, इन सारी चीजों में ऐसा बिलीव नहीं करते, और फिर उनके साथ वक्त अपना खेल खेल जाता है। खैर, इस फिल्म का एक गाना है जो अक्सर शादियों के लेडीज संगीत में फादर्स या दादाजी नाना जी की परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जहां वो अपनी शरीके हयात, अपनी हमनशी, अपनी जोहर अजबी की तारीफ करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

एक और फादर चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको हिंदी फिल्मों में बहुत एक्सप्लोर किया गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैबू सब्जेक्ट है, विच इज इललेजिटिमेट यानी कि नाजायज बच्चा एंड फादर। अभी देखो यूजुअल ड्रिल क्या होता था पुरानी फिल्मों में कि हीरोइन जो है या वुमन कैरेक्टर जो है वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो क्लासिक क्लीशे डायलॉग आता था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एंड जो फादर है ही वुड चिकन आउट या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी था तो छुप छुप के, और देयर वुड बी सम अदर गुड मैन जो इस वुमन से शादी कर लेगा, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा, उनको प्यार परवरिश प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक आई यूज्ड, मतलब उनको सेफ रखेगा, उनके लिए प्रोवाइड करेगा। बट देयर इज दिस वन मूवी जिसमें सब्जेक्ट को इतना ब्यूटीफुली ट्रीट किया गया है ना, इट इज सो हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग एज वेल। ये है 1983 की मूवी मासूम। हैट्स ऑफ टू मासूम फिल्म की पूरी टीम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: ये हिंदी फिल्मों में जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ना जहाँ पे पिताजी प्यार के दुश्मन हो गए, उन सारी फिल्मों की बाप फिल्म पता है कौन सी है?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: इन सारी फिल्मों की बाप फिल्म है द आइकॉनिक कल्ट क्लासिक टाइमलेस मुगले आजम। और उसमें वो जो प्यार के दुश्मन पापा का रोल निभाया है ना पृथ्वीराज कपूर जी ने, हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग है उनकी, क्या आवाज है उनकी। वो मतलब वो प्यार के दुश्मन होते हैं तो भी आप उनसे रिलेट करते हो, खास करके जब वो कहते हैं कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने उसूलों के गुलाम हैं, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब वो एक शहंशाह भी हैं और एक वो बाप भी हैं, उसका जो उन्होंने पोर्ट्रेयल किया है ना ऑसम। और वो एक बात जो अनारकली को कहते हैं, वो एक जो डायलॉग है वो सुनते हैं,
2: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
0: ओए होए होए होए, गूज़बम्प्स। किसी प्रेम कहानी में अगर किसी पापा ने विलन प्ले किया है ना तो इन्होंने किया है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

जॉनी, मेरा नाम, मूवी का नाम, मेरा नाम है चारू। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची। और ये जो मूवी थी ना जॉनी मेरा नाम, इसमें जो हेमा मालिनी जी का किरदार रहता है वो अपने लॉस्ट फादर को ढूंढ रहा होता है। और पुरानी फिल्मों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया हो, पोर्ट्रे किया गया हो। ज्यादातर बाप बेटा ही होता रहता था। अच्छा, दो फिल्में जो मुझे डिस्टिंक्टिवली याद आ रही है ना, जहाँ पे बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है, और ये दोनों फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की हैं। एक तो 1969 की आशीर्वाद, जिसमें अशोक कुमार फादर प्ले करते हैं और अपनी बेटी के बचपन में वो उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि एक जुर्म में उनको जेल हो जाती है। फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। दूसरी फिल्म 1967 की अनुपमा, जिसमें अनुपमा का रोल शर्मिला टैगोर ने प्ले किया है। इसमें इनके फादर के मन में इनके लिए बहुत कड़वाहट होती है बिकॉज इनको जन्म देते वक्त इनकी माँ गुजर जाती है, जिनसे फादर बहुत प्यार करते हैं। वैसे इस फिल्म के गाने भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये वाला सुन लेते हैं, हेमंत कुमार की कॉम्पोजिशन, कैफी आजमी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन ले गया,
2: डिस्प्ले आ रहा है,
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: आपने नहीं बताया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: नहीं है।
1: एक बार बचपन में ना मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ था सर पे, तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरे पापा ने बोला कि छोटे होते अगर हमारे पास भी ये होता ना तो देवानंद जैसा हेयर स्टाइल बनाना कितना आसान हो जाता। तो देवानंद साहब का वो जो पफ्ड हेयर स्टाइल था, आई थिंक पूरा 50s और मिड 60s तक, इट वॉज अ रेज। मतलब लड़कियां तो मरती थी उनके उस हेयर स्टाइल पे और लड़के उसे इमिटेट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि मेरे पिताजी। मुझे याद है एक बार मेरे पापा टेप रिकॉर्डर पे गाने सुन रहे थे, तो एक गाना आया देवानंद का और मैंने अपने पापा के सर पे हेयर बैंड लगा दिया और बोला लो आप भी देवानंद बन गए। वो गाना सुनते हैं ना यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: न चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी हिंदी फिल्में और उनके बाप। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कितने अलग अलग तरह के फादर्स के किरदार हुए हैं हिंदी फिल्मों में। गरीब मजबूर बाप, उसूलवादी बाबूजी, अमीर घमंडी डैड, प्यार के दुश्मन पिताजी, या वो बाप जिनके लिए विलन से बदला लिया जाता था। और कितने अमेजिंग एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हैं। कुछ पॉपुलर नाम लूं तो AK हंगल साहब, नासिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, ओम प्रकाश जी, उत्पल दत्त जी, डेविड या अजीत साहब, कई बार विलन पापा भी होते थे ना, या फिर विलन प्लस कॉमिक प्लस कैरेक्टर रोल्स वाले कादर खान साहब, जीवन साहब, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम एंड हैट्स ऑफ टू रियल फादर्स जिनसे शायद ये किरदार कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो। वो रियल फादर्स जो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, थक भी जाएं तो आह भी नहीं भरते। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कहते हैं हमारे माता पिता के हमारे लिए जो सैक्रिफाइसेस होते हैं कुछ तो हमको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ये तो हमको दिख जाता है कि त्योहार पे सबने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, बस पिताजी पुराना कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, लेकिन घर के बाहर वो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये हमको नहीं पता चलता। कई बार हमारी सब जरूरतें वो पहचान लेते हैं, पापा कुछ कहे बिना ही सब जान लेते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। एक और बहुत अच्छी लाइंस मैंने पढ़ी थी कहीं, मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और ये एक और

शेर है, उनके होने से बख्त होते हैं, बख्त मतलब नसीब, अच्छे भाग्य, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। सभी लविंग फादर्स के लिए बहुत सारी खुशियां और अच्छी सेहत की कामना करते हुए मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय। और किसी भी वजह से अगर आपके फादर आपकी लाइफ में नहीं है, जैसे मेरे पिताजी बहुत सालों से स्वर्ग में आराम फरमा रहे हैं, तो आपको जादू की जप्फी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, अब होती है मुलाकात जल्दी यहीं मिर्ची पर।

0: जैसे लिट्टी के साथ चोखा, रबड़ी के साथ जलेबी, मोमो के साथ लाल वाली चटनी, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस नजर आने वाले हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज न्यू कॉम्बिनेशंस जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से साल 2026 में हमें नजर आने वाले हैं। एंड दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्टर्स आर गोइंग टू ब्रिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी, केमिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट ऑन द बिग स्क्रीन। देखिए, ये फ्रेश पेयरिंग्स हैं व्हिच आर सेट टू हेडलाइन सम ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स अक्रॉस जॉनर्स, फ्रॉम रोमांस एंड हॉरर टू फैंटेसी एंड एक्शन। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद राशा थडानी एंड अभय वर्मा, जिनकी मूवी आएगी लाइका एंड लाइकी, अ यूथफुल एंटरटेनर दैट हैज already generated a lot of buzz. Moving on, number 2 pe hain Sai Manjrekar and Raghav Jiyal. Ikai hai inki upcoming film ka naam. और इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग स्क्रीन पर्सनालिटीज एक यूनिक डायनामिक जरूर दिखाएंगी इन द फिल्म। मूविंग ऑन, नंबर 3 पे श्रीलीला एंड इब्राहिम अली खान जो नजर आने वाले हैं इन दिस मूवी दिलेर, और इनकी फ्रेश पेयरिंग हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स

0: Mirci. Iskaba la puskaba na sakaba na. Yabala. Burga burga. La vizba la burga. Mirci burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
2: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। स्कैम 1992, स्कैम 2003 और मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी जैसी कहानियां लिखने वाले करण व्यास, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी की अपकमिंग फिल्म की कहानी भी लिख रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स हैड इट दैट इस मूवी का नाम लगन लागी रे होगा, बट रिसेंटली एक इंटरव्यू में करण ने बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट अभी अनटाइटल्ड है, तो यूं ही किसी भी स्पेक्यूलेशन पे विश्वास ना करें। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, भाई जितने भी फैंस हैं स्पाइडी के, इंडिया में आईमैक्स रिलीज नहीं मिल रही है इस मूवी को, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी ने सारे स्क्रीन्स कैप्चर कर रखे हैं। ऑल्दो इन दोनों फिल्मों की रिलीज में एक महीने का गैप है एंड दोनों की ही एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, बट समहाउ स्पाइडी फैंस विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वेल, द ओडिसी इज रिलीजिंग ऑन द 17th ऑफ जुलाई एंड स्पाइडरमैन ऑन द 30th ऑफ जुलाई, व्हिच मेक्स मी थिंक भाई जुलाई, व्हिच इज माय बर्थ मंथ, इज गोना बी रियली ह्यूज, स्पेशली फॉर हॉलीवुड इन इंडिया। बंटवारा 1947 के कैरेक्टर पोस्टर आउट होने के बाद इस मूवी का टीजर भी आ चुका है, जिसमें देयर इज अ फाइट फॉर ह्यूमैनिटी। मूवी के लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल, शबाना आजमी, करण देओल एंड अभिमन्यु सिंह, विच इज अ मच एंटिसिपेटेड पीरियड ड्रामा। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान प्रोडक्शंस ने, जिसमें उनका ही नरेशन भी होने वाला है, एंड इज बीइंग डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी, जो 14th ऑफ अगस्त को रिलीज होगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे भी ढूंढन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। हर रोज की बात ही मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को जगाने की, उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ थ्रू दिस बॉलीवुड गेम। बेसिकली आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इसकी शुरुआत कर सकूं। सो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं सूरज जी। तो तैयार हैं आप? ओके, कॉकटेल 2 के लीड एक्टर कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: क्या बात है, शाहिद कपूर किस फिल्म में सर्जन बने हैं?
3: कबीर सिंह।
0: बहुत बढ़िया। कबीर सिंह की प्रीति कौन है?
3: ये क्या नाम है, कियारा।
0: हाँ, सही बोल रहे हैं,
3: कियारा आडवाणी।
0: बहुत बढ़िया। कियारा आडवाणी की फिल्म जिसमें उनका बच्चा एक्सचेंज हो जाता है,
3: मूवी का नाम है गुड न्यूज।
0: गुड न्यूज में कार सेल्समैन कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो विकेट सनी बने हैं?
3: मुझसे शादी करोगी।
0: बहुत बढ़िया। मुझसे शादी करोगी में दोनों एक्टर्स किससे शादी करना चाहते हैं?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसका नाम मिठाई के नाम पे है?
3: बर्फी। बर्फी।
0: बर्फी में बर्फी कौन है?
3: बर्फी में बर्फी कौन है? रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर हैप्पी क्लब के प्रेसिडेंट किस फिल्म में बनते हैं?
3: अजब प्रेम की गजब कहानी।
0: क्या बात है, अजब प्रेम की गजब कहानी में जेनी कौन है?
3: जेनी कटरीना कैफ।
0: कटरीना कैफ को कौन सी फिल्म में किसी और की सांस में सांस आती है?
3: जब तक है जान।
0: जब तक है जान में रिपोर्टर कौन है?
3: रिपोर्टर अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा किस फिल्म में डांस

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े एक बार फिर से इधर उधर दौड़े, अरे भाई मैं तो मिर्ची फिल्मची वाला गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो आज उस गेम की शुरुआत मेरे साथ की सूरज जी ने, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए आई हैव गॉट राजीव जी ऑन द टेलीफोन लाइन। कैसे हैं सर?
2: बढ़िया मैम, आप बताएं।
0: बिल्कुल ठीक। क्या आप आगे का गेम कंटिन्यू करना चाहेंगे फिर मेरे साथ?
2: यस मैम।
0: ओके, तो बता दीजिए फिर शाहरुख खान किस फिल्म में टीवी जर्नलिस्ट बने हैं?
2: आई मैम शायद फिर भी दिल हिंदुस्तानी।
0: बहुत बढ़िया। फिर भी दिल हिंदुस्तानी की फीमेल लीड कौन है?

0: जूही चावला।
1: जूही चावला की फिल्म जिसमें उनके बेटे का नाम बंकू है।
0: भूतनाथ।
1: भूतनाथ में भूत कौन है?
0: अमिताभ बच्चन।
1: अमिताभ बच्चन किस फिल्म में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सिखाते हैं?
0: अच्छा, मोहब्बतें।
1: मोहब्बतें में शाहरुख खान को किससे प्यार होता है?
0: ऐश्वर्या
1: राय। की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड उनको उनके लवर से मिलवाने ले जाते हैं?
0: हम दिल दे चुके सनम।
1: बहुत बढ़िया। हम दिल दे चुके सनम में तड़प तड़प के किसके दिल से आह निकलती रही?
0: सलमान खान।
1: सलमान खान लोगों की पुंगी किस फिल्म में बजाते हैं?
0: हेलो ब्रदर।
1: क्या बात है। हेलो ब्रदर की फीमेल लीड कौन है?
0: रानी मुखर्जी।
1: रानी मुखर्जी लॉयर किस फिल्म में बनी है?
0: लॉयर बनी है शाहरुख खान की मूवी है।
1: हाँ हाँ,
0: बहुत फेमस मूवी है।
1: बहुत प्यारी फिल्म
0: है। वीर जारा।
1: वीर जारा में जारा कौन है?
0: प्रीति जिंटा।
1: नैना किस फिल्म में बनी है?
0: ओके, अच्छा, कल होना हो।
1: कल होना हो में नैना से वन साइडेड लव कौन करता है?
0: सैफ अली खान
1: की फिल्म जिसके सीक्वल में रश्मिका मंदना और कृति सैनन फीमेल लीड्स होने वाली हैं?
0: कॉकटेल 2।
1: क्या बात है। इसी के साथ हमें मिल चुके हैं हमारे दूसरे
2: मिर्ची फिल्म ची।
1: तो भाई इस गेम को सुन के अगर आपके अंदर का भी फिल्मी कीड़ा जाग जाता है, देन वरी नॉट माई फ्रेंड। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक और इंस्टा में लूंगी, वहां आप डीएम कर सकते हैं अपना नंबर, एंड देन मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको कॉल कर दूं। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka. Milci.
1: It's Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उन लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
1: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
0: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कॉमिक, ड्रामेटिक, इंस्पिरेशनल, इमोशनल।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
3: यार बाबू मोशा। इससे पहले कि आप कंफ्यूज्ड हो, लेट मी टेल यू, मैं अलग अलग तरीकों के मोनोलॉग्स की बात कर रही हूँ यार। मोनोलॉग्स बेसिकली हिंदी सिनेमा के, हमारे फिल्मों के वो पर्टिकुलर सीन्स हैं जिसकी वजह से वो फिल्म हमारे दिल में हमेशा के लिए रह गई। और आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं ऐसे ही मोनोलॉग्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट गुड न्यूज से दीप्ति बत्रा, दैट इज करीना कपूर खान की तरफ से आने वाला मोनोलॉग। नंबर दो पे बात करते हैं यार चक दे इंडिया का वो मोनोलॉग 70 मिनट, जब कबीर खान AKA शाहरुख खान इंटरनेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच के तौर पे पूरी टीम को तैयार करते हैं फिनाले के लिए। फिल्म को डायरेक्ट किया शमित अमिन ने और लिखा है जयदीप साहनी ने। एंड यू नो, एक इंटरव्यू में जयदीप साहनी ने बताया कि ये पर्टिकुलर सीन जो 70 मिनट वाला था ना, वो शाहरुख खान को कैसे समझाया जाए उनको भी समझ नहीं आ रहा था। तो शाहरुख खान ने बोला कि देखो, डोंट वरी, I'll handle it and rest is history। आज भी जब वो डायलॉग सुनते हैं हम तो गूजबम जरूर होता है हमारे शरीर पे। इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है यार रियल लाइफ से निकल के ऐसा कोई रियल लाइफ लाइफ कोच हमारे जिंदगी में होता ना, तो जो हमारी प्रोकास्टिनेशंस हैं वो जब जब हमारे दिमाग में आती तब तब वो हमें मोटिवेट कर देता। नहीं, खैर चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे नमस्ते लंदन की बात करते हैं। वो फिल्म जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय विपुल अमृतलाल शाह। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और ऋषि कपूर लीड रोल्स में थे। एंड कौन भूल सकता है वो मोमेंट जब अक्षय कुमार ने एज अर्जुन सिंह हम सबको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराया था एज एन इंडियन। जहां एक तरफ उन्होंने हमारे नेशन के बारे में फॉरेनर्स को बहुत कुछ सिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ ही लेफ्ट अस स्पीचलेस। तो अगर ऐसे ही आपके दिमाग में भी कोई एक पर्टिकुलर मोनोलॉग अटका हुआ है जो आप हमेशा याद करते रहते हो, तो उसके बारे में मुझसे शेयर कर सकते हो यार। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कुछ चीजें हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए रहती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा है, बात जब हिंदी सिनेमा की हो ना, तो कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर बस जाते हैं। बस इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं हिंदी सिनेमा के कुछ मस्त वाले मोनोलॉग्स की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट गुड न्यूज से करीना कपूर खान का मोनोलॉग। नंबर दो पे चक दे इंडिया के 70 मिनट वाले मोनोलॉग की बात हुई। नंबर तीन पे हमने डिस्कस किया नमस्ते लंदन को। अब नंबर चार पे बात करते हैं इंग्लिश विंग्लिश के बारे में। यार वेल, ये फिल्म आई थी 2012 में जिसे गौरी शिंदे ने डायरेक्ट किया, एंड इस फिल्म में श्रीदेवी मैम वाज द एपिटोम ऑफ परफेक्शन आई टेल यू। जिस तरीके से फिल्म में उनका कैरेक्टर दैट इज शशि गोडबोले हम सबको सरप्राइज कर देती है विद हर स्पीच दैट टू इन इंग्लिश, जिसमें वो थॉट प्रोवोकिंग बातें करती हैं अबाउट मैरिज। ओ हो, वो तो मतलब अलग लेवल था यार। एंड ये पर्टिकुलर मोनोलॉग जो था उस पूरे मूवी का जिस्ट इन अ वे हम सबको दे देता है। जिस तरीके से शी फाइनली मेड हर हस्बैंड एंड डॉटर रियलाइज कि उनकी वैल्यू क्या है वाज अप्लॉडेबल कसम से। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे मोनोलॉग्स के सरताज की बात करेंगे। हां जी, ये मेरे हिसाब से है, हां, क्योंकि फिल्म दामिनी से सनी देओल के उस तारीख पे तारीख वाले मोनोलॉग की बात करना चाहती हूँ। सो ये फिल्म आई थी 1993 में जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था, जिसके लीड रोल्स में थे सनी देओल, मीनाक्षी सेशाद्री, अमरीश पुरी और ऋषि कपूर सर। सो वी ऑल हैव विटनेस्ड कि हमारे इंडिया में रेप केसेस के वर्डिक्ट्स किस तरीके से डिलेड होते हैं, राइट? इनफैक्ट 2012 का जो दिल्ली रेप केस था वाज अ रीसेंट प्रूफ ऑफ इट। बट सोचो 1993 में सनी देओल ने एज अ लॉयर, जहां उनके कैरेक्टर का नाम गोविंद था, उसने इस चीज पे स्ट्रेस किया था कि कैसे रेप विक्टिम्स की जिंदगी तक खत्म हो जाती है लेकिन उनके केस के लिए वर्डिक्ट नहीं आता। Honestly, till date, it is one of the most relevant monologues, as per me. खैर, अगर आपका भी कोई ऐसे ही फेवरेट वाला मोनोलॉग है from any of your favorite movies, तो उसके बारे में मुझसे शेयर कर सकते हो। MIRCHISHRUTI, that is मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। Meanwhile, enjoy the songs right here on मिर्ची, it's hot.

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। स्कैम 1992, स्कैम 2003 और मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी जैसी कहानियां लिखने वाले करण व्यास, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी की अपकमिंग फिल्म की कहानी भी लिख रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स हैड इट दैट इस मूवी का नाम लगन लागी रे होगा, बट रिसेंटली एक इंटरव्यू में करण ने बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट अभी अनटाइटल्ड है, तो यूं ही किसी भी स्पेक्यूलेशन पे विश्वास ना करें। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, भाई जितने भी फैंस हैं स्पाइडी के, इंडिया में आईमैक्स रिलीज नहीं मिल रही है इस मूवी को, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी ने सारे स्क्रीन्स कैप्चर कर रखे हैं। ऑल्दो इन दोनों फिल्मों की रिलीज में एक महीने का गैप है एंड दोनों की ही एडवांस बुकिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, बट समहाउ स्पाइडी फैंस विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वेल, द ओडिसी इज रिलीजिंग ऑन द 17th ऑफ जुलाई एंड स्पाइडरमैन ऑन द 30th ऑफ जुलाई, व्हिच मेक्स मी थिंक कि भाई जुलाई, व्हिच इज माय बर्थ मंथ, इज गोना बी रियली ह्यूज, स्पेशली फॉर हॉलीवुड इन इंडिया। बंटवारा 1947 के कैरेक्टर पोस्टर आउट होने के बाद इस मूवी का टीजर भी आ चुका है, जिसमें देयर इज अ फाइट फॉर ह्यूमैनिटी। मूवी के लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल, शबाना आजमी, करण देओल एंड अभिमन्यु सिंह, विच इज अ मच एंटिसिपेटेड पीरियड ड्रामा। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान प्रोडक्शंस ने, जिसमें उनका ही नरेशन भी होने वाला है, and is being directed by Rajkumar Santoshi, जो 14th of August को रिलीज होगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot।

दोस्तों, फ्राइडे की शाम में ना कुछ अलग ही जादू होता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ पूरा हफ्ता हम सब अपनी अपनी लाइफ के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने होते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, न जाने क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, फिर आता है फ्राइडे और वो बोलते हैं कि यार अब तो हीरो बन जाओ, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग का मूड ना बिल्कुल बॉलीवुड ओपनिंग सीन जैसा होता है। लाइट्स थोड़ी ब्राइटर लगती है, म्यूजिक थोड़ा बेटर लगता है और प्लान्स चाहे बड़े हो या ना हो, एक्साइटमेंट फ्री में मिल ही जाती है। यार कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर जा रहा है और कुछ लोग बस घर पहुंच के एसी और काउच के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन यार सच्ची बताऊं ना तो बॉलीवुड में ना हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए, बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चलाओ और सीन एंजॉय करो। तो चलिए आज की शाम शानदार में भी हम वही करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा बॉलीवुड मैजिक। तो आप भी बताओ दोस्तों, अगर आपकी फ्राइडे नाइट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस फ्राइडे शाम को शानदार बनाने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहां मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेस एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ती ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखे ना तो मजा आ जाता है, मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, ये करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर। और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सन्ने रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट 9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

Radio Mitri New York. It's hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप
3: फालतू। आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
5: शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं, तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर पेरेंट का ना एक सपना होता है कि बच्चे ना दुनिया में कितना भी आगे बढ़े लेकिन अपने रूट्स को कभी ना भूले। और हर डांस लवर जानते हैं कि यार डांस ना सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, डांस एक कहानी होती है, एक कल्चर होता है और एक पहचान होती है। और इसी पहचान को 30 साल से संभाल कर रखा है इंडियानिका अकेडमी ने। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन पद्मा खन्ना जी के विजन से शुरू हुई ये अकेडमी आज भी कथक की नज़ाकत, बॉलीवुड की एनर्जी, गरबा के रंग, भांगड़ा की मस्ती और मॉडर्न डांस की क्रिएटिविटी को एक ही स्टेज पर लेकर आती है। और अब वक्त आ गया है उनके सबसे बड़े सेलिब्रेशन का, चमकते सितारे 2026 यानी इंडियानिका एकेडमी का 30th एनुअल कल्चर एंड टैलेंट ग्रैंड शो। और ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस भरी शाम नहीं होगी, ये उन बच्चों की मेहनत का सेलिब्रेशन है जो महीनों से रिहर्सल कर रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है जो अपने बच्चों को कल्चर से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अपनी पहचान को सेलिब्रेट करना कितनी खूबसूरत बात होती है। तो दोस्तों कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए, June 20th यानी शनिवार की शाम 4 PM ऑनवर्ड्स इन कॉलोनिया हाई स्कूल न्यू जर्सी। और टिकट बुक करने के लिए विजिट कीजिए indianikaacademy.com indianikaacademy.com। और मिर्ची लिसनर्स के लिए स्पेशल कूपन कोड मिर्ची 2026 जिससे आपको मिलेंगे 30% ऑफ ऑन योर टिकट्स। जो जितने भी न्यू जर्सी के डांस प्रेमी हैं, कथक प्रेमी हैं, बॉलीवुड डांस प्रेमी हैं, भांगड़ा प्रेमी हैं, इस शो को, इस एनुअल गैदरिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही विजिट कीजिए indianikaacademy.com एंड बुक योर टिकट्स विद मिर्ची कूपन कोड मिर्ची 2026। और डांस प्रेमियों के लिए ये अगला मस्ती भरा डांस वाला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते हैं। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
1: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो या वो स्ट्रेसफुल मोमेंट जब किसी अपने के रिपोर्ट्स का वेट हो, उस वक्त एक काम वॉइस, एक केयरिंग नर्स या फिर एक हेल्पफुल टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता, एक रीअश्योरेंस लगता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ आप भी किसी के हेल्प का रीज़न, किसी के राहत का रीज़न बन सकते हो, तो आज ही कॉल कीजिए एम्स एजुकेशन को, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विद पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा, June 26th की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई USA INC फॉर विशाल मिश्रा पागल पर टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन से मूवी का है, यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बस DM कर दीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो @9033647244 9033647244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागलपन टूर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, June 26th, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर USA INC। और देखिए दोस्तों इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई USA INC। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफ़ी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसीलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDH।

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है, और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर पेरेंट का ना एक सपना होता है कि बच्चे ना दुनिया में कितना भी आगे बढ़े लेकिन अपने रूट्स को कभी ना भूले। और हर डांस लवर जानते हैं कि यार डांस ना सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, डांस एक कहानी होती है, एक कल्चर होता है और एक पहचान होती है। और इसी पहचान को 30 साल से संभाल कर रखा है इंडियानिका एकेडमी ने। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन पद्मा खन्ना जी के विजन से शुरू हुई ये एकेडमी आज भी कथक की नज़ाकत, बॉलीवुड की एनर्जी, गरबा के रंग, भांगड़ा की मस्ती और मॉडर्न डांस की क्रिएटिविटी को एक ही स्टेज पर लेकर आती है। और अब वक्त आ गया है उनके सबसे बड़े सेलिब्रेशन का, चमकते सितारे 2026 यानी इंडियानिका एकेडमी का 30th एनुअल कल्चर एंड टैलेंट ग्रैंड शो। और ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस भरी शाम नहीं होगी, ये उन बच्चों की मेहनत का सेलिब्रेशन है जो महीनों से रिहर्सल कर रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है जो अपने बच्चों को कल्चर से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अपनी पहचान को सेलिब्रेट करना कितनी खूबसूरत बात होती है। तो दोस्तों कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए, June 20th यानी शनिवार की शाम 4 PM onwards in Colonia High School, New Jersey। और टिकट बुक करने के लिए विजिट कीजिए indianikaacademy.com। और मिर्ची लिसनर्स के लिए स्पेशल कूपन कोड मिर्ची 2026, जिससे आपको मिलेंगे 30% ऑफ ऑन योर टिकट्स। जो जितने भी न्यू जर्सी के डांस प्रेमी हैं, कथक प्रेमी हैं, बॉलीवुड डांस प्रेमी हैं, भांगड़ा प्रेमी हैं, इस शो को, इस एनुअल गैदरिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही विजिट कीजिए indianikaacademy.com एंड बुक योर टिकट्स विथ मिर्ची कूपन कोड मिर्ची 2026। और डांस प्रेमियों के लिए ये अगला मस्ती भरा डांस वाला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो

वीकेंड ऑफिशियली ऑन हो चुका है। दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालो, स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे, और जो पेंडिंग स्ट्रेस है उसको कल पे डाल दो यार। ये है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। जहाँ फ्रेंड सर्कल हो या स्पेशल सर्कल, टुनाइट नोबडी इज सिटिंग। डांस फ्लोर पे बस एक रूल है, ऑकवर्ड मत हो, बस मूव करो। और अगर स्टेप नहीं आता, कॉन्फिडेंस से करो यार, लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है। डांस बसंती।